0: 104.9 FM Funny Show. Not just a radio. Not just a radio. It's a mindset of entertainment.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
4: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
3: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
4: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
5: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support, aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
6: जिंदगी एक रंगमंच है
3: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
5: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com.
7: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
8: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। माई फैमिली होम लोन .com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट माई फैमिली होम लोन .com और कॉल 4697343338, 4697343338। माई फैमिली होम लोन .com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
11: Wait, इतना सब और price?
5: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
12: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
13: लिया।
12: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
13: नहीं आया।
12: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनाडा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
14: Visit www.senadainc.com today.
15: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ. वेल, इट इज 7:06 ऑन द क्लॉक. तो आपको पता है 7:06 बजे क्या होता है? यस, इट इज एन इवनिंग इन डैलस. जस्ट अनदर वेंसडे इवनिंग इन डैलस एंड वी आर हियर, यू आर हियर विथ मी, इपी द हिपी ऑन फनेशिया रेडियो 104.9 FM. आपका वेंसडे कैसा गया? मेरा वेंसडे काफी ठीक गया. माई वॉइस, एज यू कैन टेल, इज सो मच बेटर. ठीक है, मेरी एलर्जीज, आई थिंक वो एलर्जीज ही थी. मतलब अगर वायरल होता तो कम से कम 2 हफ्ते के लिए आई वुड हैव बिन आउट, क्योंकि मुझे पता है. सो आई थिंक इट वॉज जस्ट सम वियर्ड एलर्जीज इन द एयर. और मैं सारे दिन आज छींक भी रही थी, और अभी मार्विन जी भी थोड़ा सा छींकते छींकते ही वॉक कर रहे थे. तो भाई, एलर्जीज आर रियली हाई इन द एयर. यू गाइज बी केयरफुल आउट देयर, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना? तो बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो, हैव ए लिसन टू दिस सॉन्ग.

फ्रेंड्स, इट इज 7:22 ऑन द क्लॉक. 8 मिनट में हम लोग एक ब्रेक पे जाने वाले हैं, जैसे हमेशा ही जाते हैं. लेकिन उसके बाद टुडे आई हैव समथिंग रियली स्पेशल. टुडे वन ऑफ माय फ्रेंड्स केम अप टू मी एंड शी वाज आस्किंग मी फॉर सम रिलेशनशिप एडवाइस. एंड आई वाज लाइक, भाई यार, ये तो मैं भी नहीं बता सकती, तो आई विल आस्क यू गाइज व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट दिस. लेकिन वो हम ब्रेक के बाद बोलेंगे. आई विल टेल यू द होल स्टोरी एंड टुडेज थीम इज गोइंग टू बी लव एंड रिलेशनशिप्स एंड दिस न्यू टर्मिनोलॉजी इन डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स दैट पीपल आर नाउ अडेप्टिंग, लाइक गोस्टिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. ओके, एक्सक्लूसिवनेस. ऑल्दो एक्सक्लूसिवनेस इज नॉट समथिंग न्यू, इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर एवर. लेकिन आई डोंट रियली गेट इट, यू नो, लाइक आई डोंट थिंक व्हेन आई वॉज यंगर. And, you know, when we were dating, when I was younger, like in my 20s or something, I don't think we thought so much about being exclusive. But those things we'll talk about later. Take a listen to this song and then we'll come back and talk some more.

कोई छोटा मोटा चोर उचक्का लगता है सब। पैसे रिवॉल्वर सब छोड़ के भाग गया डर के मारे। कुछ चीज मिसिंग है साहब।

0: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
0: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
3: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन, आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
4: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल,
3: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल।
4: ओके देन, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
3: And what's so special at Neon Cactus?
4: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabiya halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
3: Not bad.
4: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
3: Okay, this I didn't expect from you.
4: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
5: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
6: इट्स लॉसन।
5: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
6: इट्स लॉसन।
5: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
7: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
8: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
8: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
8: ये क्या होता?
9: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
0: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन, जस्ट 3 doors डाउन, विद लिमिटेड रिजर्वेशन available.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
11: क्या मतलब?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
0: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
15: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.
16: And we are back. You guys are listening to AP the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. And I'm so excited to talk to you about what's going to happen today. Today we're going to talk about a story of my friend. Theek hai? तो हुआ ये कि माई फ्रेंड हैज़ बिन सीइंग दिस गाय सिंस काइंड ऑफ नवंबर. ठीक है, तो मतलब नवंबर में व्हेन दे स्टार्टेड सीइंग ईच अदर, ही हैड जस्ट कम आउट ऑफ अ सीरियस रिलेशनशिप. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 11 साल की रिलेशनशिप, जिसमें वो ऑलमोस्ट शादी करते करते वो नहीं किया उसने शादी. उसके बाद भी यू नो इट वॉज लाइक अ वेरी कन्फ्यूज सिचुएशन. she really liked him for a long, long time. और उसको लगता था कि उसके और उस लड़के के बीच में कुछ chemistry है, क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सालों से जानते हैं. And I'm talking like वो एक दूसरे को करीबन 7-8 साल से जानते हैं. तो फिर उनके उसको लगा कि हमारे बीच में तो कोई chemistry है इस तरह से. तो when the situation happened and this guy was basically dropping all the hints, एक बार वो ऐसे ही hang out कर रहे थे, just like friends. And he started dropping all these hints because he had just broken up. वो आया और उसने बोला कि हे पता है मैंने अपनी girlfriend या ex के साथ I broke up with her. And she was like, oh, okay, ठीक है. फिर वो they started hanging out और hang out करते करते he was dropping hints. And then she took the hints and कुछ हुआ. फिर उसके बाद वो गायब हो गया काफ़ी टाइम तक. फिर वो सोच में पड़ गए ये क्या हो गया, मतलब I thought something was happening and then he kind of vanished again. ऐसे कैसे हो सकता है. फिर कुछ महीनों बाद वो दोबारा आया, फिर दोबारा उनके बीच में कुछ हुआ. फिर उसके बाद फिर से वो गायब हो गया. फिर वो दोबारा आया, इस टाइम इट सीम्ड अ लिटल मोर सीरियस. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग अगेन फ्रॉम से एंड ऑफ अप्रैल और मे. एंड अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है. जुलाई उस टाइम मे से जुलाई तक it was kind of consistent, things were happening again, you know, they are sending each other I miss you kind of text. Nobody has said I love you to each other, lekin they are saying I miss you wagera wagera. Ek dusre ko photos bhej rahe hain, you know, he spends the night over wagera wagera. They go out on dates, matlab one date only, honestly they went on one date and things were going really nice. And, you know, they're talking about the future. They're talking about, you know, what's happening. ठीक है. फिर करते करते suddenly he has stopped replying to her text. कुछ दो हफ्ते हो गए और वो उसको मैसेज कर रही है और वो बंदा चेक कर रहा है और suddenly उसका जवाब नहीं दे रहा है. मतलब things were going great for 2 months and suddenly he's vanished or out of the blue. तो उसके बाद उसके बाद की स्टोरी मैं आपको बाद में बताती हूँ. पहले ये गाना सुनते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत लंबी बातें चलती रहती हैं हमारी.

guys, this is Ippy the Hippie, and y'all are listening to Funasia Radio 104.9 FM. It is 7:42 on the clock. और बातें करते करते रिलेशनशिप की बातें करते करते एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गई कि आपको पता है वन ऑफ द बिगेस्ट reasons why a lot of relationships do not survive and break up is because of finances, because maybe the couple, the guy and the girl, or the guy and the guy, or the girl and the girl, I don't know. I mean, we are in the modern times and, you know, we accept all kinds of couples. Yeah, jo bhi hai. Well, they don't agree on finances. They don't agree in their spending patterns, saving patterns, vagaira, vagaira. And sometimes only one person is making the money and the other one is just spending and vagaira, vagaira. I've been watching a lot of Caleb Hammer shows, if you know who he is. बहुत अच्छी बात है अगर नहीं देखा है तो यू शुड गो चेक इट आउट सम ऑफ इट इज रियली ब्रूटल एंड आई आल्सो वॉच समवन कॉल्ड रमीत सेठी लेकिन फाइनेंसेस की बात करते हुए आपको पता है माई टाइम एक्विटी लेड बाय सुधीर पाय हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स सो वेदर यूर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ रिटायरमेंट और ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट्स माई टाइम एक्विटी दे ऑफर पर्सनलाइज सोल्यूशंस डिजाइन अराउंड योर गोल्स विजिट mytimeequity.com और कॉल 4697021272 today. That's right, guys. So don't fight about finances with your partner. Call an expert. Maybe they can help you out build whatever your dream life is in terms of finances. ठीक है? एक गाना सुनते हैं. Then I will complete the rest of the story about my friend when we come back. We also had an amazing share by Shafi ji who told me something that I should tell my friend and what she should do. But I will tell you what he said after this song. This is Diljit Dosanjh with Lover.

तो गाइज जो हम बात कर रहे थे, शफी जी कॉल्ड मी अप एंड शफी जी सेड कि लुक यू शुड टेल योर फ्रेंड टू गो कन्फ्रंट दिस गाय, क्योंकि भाई वो टाइम पास कर रहा है, देर इज डेफिनेटली अनदर गर्ल इन द पिक्चर, और वो इसको लेके भी घूम रहा है, उसको लेके भी घूम रहा है, नहीं तो वो कंसिस्टेंट होता है. ऐसे नहीं है कि वो आगे पीछे, यू नो, सडनली वो गायब है, सडनली वो प्रेजेंट है, सडनली वो गायब है. आई मीन आई थिंक देर इज अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन दैट शफी जी. आई थिंक शी शुड डेफिनेटली गो एंड कन्फ्रंट इट, कन्फ्रंट हिम. आई विल टेल माई फ्रेंड दैट ऑनेस्टली. देते हैं जॉब इंटरव्यूज के बाद भी आपको प्रॉपर रिजेक्शन नहीं मिलता है, मतलब यू नो पीपल समहाउ फाइंड इट ईजियर टू नॉट गिव एन आंसर और टू नॉट रिस्पॉन्ड और टू जस्ट काइंड ऑफ वैनिश. एंड दिस होल न्यू टर्म ऑफ गोस्टिंग, आई जस्ट डोंट गेट इट. एंड गोस्टिंग की बात करते हुए, आई मीन आई फील लाइक ऑनेस्टली गोस्टिंग इज जस्ट अ वे ऑफ पीपल टू काइंड ऑफ हाइड बिहाइंड. पीपल हैव सो मच एंगजाइटी दीज डेज, एंड आई थिंक इट्स अ साइन ऑफ लैक ऑफ करेज, एंड इट्स अ साइन ऑफ लैक ऑफ, आई मीन इट्स अ साइन ऑफ इनसिक्योरिटी. कि अगर आपको किसी चीज़ पे ओन अप करके किसी को रिजेक्ट करना होगा या किसी को मना करना होगा, भाई यू हैव टू बी रियली रियली कॉन्फिडेंट टू से नो टू समवन. एंड सेइंग नो टू समवन इज ऑल्सो अ स्किल दैट वी आर नॉट ऑफन टॉट व्हेन वी आर यंगर. हम बचपन में जब होते हैं, यू नो इफ़ यू वर्क विद किड्स, आई वर्क विद किड्स अ लॉट, इफ़ यू टेल समथिंग समथिंग टू अ किड, बच्चे पहले ही कहते हैं नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू डू इट, मुझे नहीं करना, आई डोंट वॉन्ट टू डू इट, दे आर अनहिंज्ड. बट एज वी ग्रो अप वी लर्न टू एक्सेप्ट थिंग्स. हमको सिखाया जाता है कि नहीं, तुम बच्चे हो, तुम नो नहीं बोल सकते, ये तुम्हारे लिए अच्छा है तो यू शुड डू इट, यू शुड से येस. एंड बिकॉज वी गेट इन, इन माई ओपिनियन, बिकॉज वी गेट इन टू दैट पैटर्न, अ लॉट ऑफ अस, मैनी ऑफ अस फॉरगेट हाउ टू से नो, हाउ टू जस्ट से हे दिस इज नॉट रियली वर्किंग आउट फॉर मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यून लाइक दैट, और आई एम सॉरी यू डोंट गेट दिस जॉब. सम कंपनीज जस्ट डोंट इवन रिस्पॉन्ड, सम कंपनीज डू विच इज ओके, बट और फ्रेंडशिप्स फॉर दैट मैटर. कई बार आप किसी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हो, यू नो यू हैंग आउट विद दैम एंड सडनली यू आर लाइक, आई मीन आई डोंट रियली गेट अलॉन्ग विद दिस पर्सन एनी मोर. हम लोग की 10 साल पहले जो फ्रेंडशिप थी वो आज की डेट पे उतनी स्ट्रांग है नहीं, एंड आई डोंट रियली रिलेट टू दिस पर्सन. सो इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू से हे आई डोंट फील दिस फ्रेंडशिप एनी मोर, इट फील्स वियर्ड, डजंट इट? सो या दिस इज व्हाट आई हैव टू से फॉर टुडे. लेकिन पहले ये गाना सुनते हैं, देन वी विल कंटिन्यू. आई हैव सम मोर थिंग्स टू टॉक अबाउट.

काहे हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना।

0: Guys, and we are back. And in 2 minutes, we're about to go into our second break. लेकिन जाने से पहले guys, मैं एक छोटी सी बात तो बता दूं कि उसके बाद 8 बजे जब आएंगे, 8 o'clock को हमारा होगा give away. That is correct. We'll have our giveaway and then we'll talk more about the things that we were talking about just before going on a break. लेकिन उसके पहले हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन गिव अवे है. वन फ्रॉम फन पिज्जा किचन, वन फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर्स, एंड वन फ्रॉम इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ, नॉट फ्रिस्को. दैट इज करेक्ट. कई बार ना मेरे से इतनी सारी बातें बोलते बोलते मेरे शहर थोड़े मिक्स हो जाते हैं. वो भी फर्स्ट है, फ्रिस्को भी फर्स्ट है, फोर्ट वर्थ भी फर्स्ट है, थोड़ा मिक्स हो जाता है. लेकिन पता है मिक्स क्या नहीं होता है? जब भी किसी एक्सीडेंट वाले सिचुएशन में पड़ते हैं ना, तो पहली कॉल जाती है पुलिस को, दूसरी कॉल जाती है ओमर ख्वाजा जी को. इफ़ यू एवर गेट स्टक इन अ कार एक्सीडेंट और स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, अटर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. क्योंकि भैया इंश्योरेंस कंपनी के साथ लड़ाई करना सबके बस की बात नहीं है. इट्स वेरी स्ट्रेसफुल एंड यू नीड टू मेक श्योर यू हैव समवन हु इज ऑन योर साइड एंड विल मेक श्योर दैट यू आर कॉम्पनसेटेड. यू डोंट पे अंटिल यू विन. फॉर ए फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-300-5046 or visit attorneyomer.com. That's right, guys. Don't worry about getting stuck. Don't worry about fighting about the insurance companies. Aapko apna compensation milega. You just need to call up Attorney Omer. That's it. That's the name you got to remember. Attorney Omer Khwaja.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, Law Offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैं चाहूं.
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Awing.
5: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
6: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
7: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
8: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
9: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
15: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
17: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
18: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
0: All right, guys, it is time for our giveaway. That is correct. तो गाइज, गिव अवे क्या है? जैसे मैंने आपको बोला था, आज एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन गिव अवे है। द थ्री गिव अवेज आर फ्रॉम फन पिज्जा किचन, रेड हॉट चिली पेपर्स एंड इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ। तो बिफोर वी गो ऑन, पहला गिव अवे इजी पीजी लेमन स्क्वीजी फन पिज्जा किचन का गिव अवे है। यू कैन विन ए $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन बाय आंसरिंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन भाई? आई विल प्ले यू एन इंग्लिश सॉन्ग एंड यू टेल मी द बॉलीवुड कॉपी ऑफ दैट सॉन्ग। यू टेल मी द बॉलीवुड कॉपी ऑफ दैट सॉन्ग एंड इफ यू लाइक अचारी पनीर पिज्जा या फिर मीट लवर्स पिज्जा या फिर तंदूरी चिकन पिज्जा, वेल दिस वन्स फॉर यू बिकॉज दे ब्लेंड इन इंडियन फ्लेवर्स विथ अमेरिकन पिज्जा स्टाइल। तो गाइज, लिसन टू द सॉन्ग, आई एम गोना प्ले इट फॉर यू एंड देन यू टेल मी द इंग्लिश वर्जन, ओके, और द बॉलीवुड वर्जन, आई एम सॉरी। लेट्स गो एंड हियर वी गो।
19: गिव मी a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss.
0: And we have our first caller.
19: I ask no more than
0: hello,
19: this.
0: Can you hear me?

guys, we are back. You're listening to Ippy the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. And this is my show, An Evening in Dallas, where we talk about love, relationships, life, and difficult situations that people don't really know what to do with. But sometimes it helps that aapke tarah aur bhi kitne log hain in the same boat. Jaane se pehle, break mein jaane se pehle, and giveaway dene se pehle, we were listening to और वी वर रादर टॉकिंग अबाउट हाउ टू से नो, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के ज़माने में पीपल डोंट वांट टू हर्ट ईच अदर. ठीक है, इन अ वे दैट्स अ रियली नाइस थिंग कि चलो ठीक है, आपको यू डोंट वांट टू हर्ट द अदर पर्सन, बट ऑल्सो बिसाइड्स दैट देर आर जस्ट सम पीपल आई फील लाइक हु डोंट वॉन्ट टू कन्फ्रंट और फेस द फैक्ट्स बिकॉज इट इज़ ईजियर टू काइंड ऑफ हाइड इन द शैडो एंड जस्ट अज्यूम कि भाई ये तो अपने आप ही हो जाए, ठीक, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा. भाई कई बार यू नो यू नीड टू स्टेप अप एंड यू नीड टू टेक ओनरशिप ऑफ वट एवर इट इज़, वेदर यू सेइंग नो टू अ पर्सन, वेदर यू सेइंग नो टू अ जॉब, नो टू अ फ्रेंड, नो टू अ हैंग आउट. कई बार क्या होता है, यू नो मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है कि समटाइम्स आई गेट अ कॉल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड आई रियली वॉन्ट टू से लाइक गाइज आई एम रियली टायर्ड टूडे, मुझे ना सोना है, लाइक लिटरली I just want to go to bed at 10 o'clock at night. वैसे 10 o'clock तो होता नहीं आजकल क्योंकि मैं 10 o'clock आपके साथ रहती हूँ, लेकिन कई बार जिस दिन मेरी छुट्टी होती है जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे, ऑल आई वॉन्ट टू डू इज जस्ट स्लीप अर्ली, गेट माई फुल 8 hours ऑफ स्लीप, घर का खाना खाऊं और थोड़ा सा कुछ मूवी शूवी देखूं और फिर मैं सो जाऊं. उस टाइम पे रात में सैटरडे नाइट को कोई मुझे पार्टी करने बुलाता है ना, आई एम जस्ट लाइक maybe next time you guys, oh okay I'll try my best to join. कई बार no बोला ही नहीं जाता और वो चीज़ है ना, no बोलनी सीखनी चाहिए. You have to take ownership of your own life and say nope, sorry guys I'm out for tonight and I want to sleep, so no, you guys have fun, I'm going to bed. या फिर you, there's a friend of yours who really is pursuing you and you don't know how to say no, and this person is like, let me take you out to dinner, let me buy you a coffee, let me buy you this, let me buy you that, and then you're like, yeah thanks but you know I wish we can just be friends. In that case, don't dilly dally, seedha bolo ki no I don't look at you like that, just learn to say no. Or even in work situations, कई बार आपको ऐसा नहीं होता बॉस एक साथ बहुत सारा काम दे देते हैं एंड यू आर जस्ट लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ. दिस हैपन टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स रिसेंटली. उसको ना सड़े रात को वो गेम देख रही थी, सॉकर गेम, और बहुत सारा काम आ गया एंड देन शी वेंट इनटू एंग्जायटी मोड. शी इज लाइक देर इज नो वे आई कैन फिनिश दिस बाय थर्सडे एंड माई बॉस एक्सपेक्ट्स मी टू डू इट. आई वाज लाइक गर्ल यू नीड टू स्टेप अप एंड जस्ट से नो, से इट इज नॉट पॉसिबल for me to do it. Learn to say no, friends. No bolna bahut important skill hai aur jitni jaldi aap seekhoge utni jaldi you will learn to stand up for yourself.

एंड वी आर बैक. लेकिन हम थोड़ी देर बाद फिर से ब्रेक में जाने वाले हैं, इसीलिए स्टिक अराउंड. आई एम गोना प्ले यू दिस वन सॉन्ग. 8:30 को जब हम वापस आएंगे, वी आर गोइंग टू प्ले आवर सेकंड गिव अवे.

0: Guys, this next part of the show is brought to you by AG FinTax, one of the fastest growing tax firms in the U.S. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and they get you ready for the future. Call 469-942-9888. Agar aapki koi bhi tax-related problems hai, then you need to visit agfintax.com. Let a tax professional help you out on how to manage those really, really heavy self-employment taxes, because I am telling you, it's a lot of money to pay to the government. I mean, we have to do a little bit of it, lekin maybe they can help you get the maximum deductions you can get, especially if you are earning more than $200,000 a year in your self-employed business or a small business. Whereas $200,000 won't be a small business, it will be a medium business in my opinion. But give them a call. Maybe they can help you out. All right? And we go into a break in 2-1.
1: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897. Or visit astrologerishwar.com.
4: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
5: हाँ.
4: घर रिलोकेट करनी है?
5: हाँ.
4: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
5: हाँ भाई हाँ.
4: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
6: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
7: Hey maps, take me to my desi grocery store.
8: Calculating route, rerouting.
7: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
8: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
7: क्यों?
8: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
7: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
9: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
8: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
10: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
11: इट्स लॉसन.
10: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
11: इट्स लॉसन.
10: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
12: इट्स लॉसन ट्रेवल्स. फॉर ऑल योर ट्रेवल नीड्स, गिव देम अ कॉल टुडे. 2146312458. द ट्रेवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रेवल.
13: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
14: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
13: नहीं.
14: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
13: नहीं.
14: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
13: वो भी नहीं.
14: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
15: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTax, your growth, our strategy.
16: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
17: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
18: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
19: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
0: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
19: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
6: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
18: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
3: हाय, आई एम शाहरुख खान, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया.
0: Guys, we are back and you are listening to Ippi the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. It is 8:33 on the clock and we are going to go into our second giveaway. And second giveaway, aapko pata hai kya hai? I will tell you what the second giveaway is. Okay? The second giveaway for today is from Red Hot Chili Peppers. Bhai, it is again, one of those Bollywood copycat song games that you know how to play. So, ab kya jeet sakte hain Red Hot Chili Peppers mein? तो रेड हॉट चिली पेपर के में आप जीत सकते हैं एक ड्राई चिली चिकन, एक चिली बेबी कॉर्न या फिर डैलसिस बेस्ट पर चिकन, दैट इज रेड हॉट चिली पेपर्स चिकन मक्खन वाला. यू कैन ऑल्सो पिक दीज अप फ्रॉम रिचर्डसन, मिकिनी और एलन लोकेशन. प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट गो टू what do you call this? Don't go to the Frisco location because it is not available at the Frisco location. This is available at the Red Hot Chili Peppers in Richardson, McKinney or Allen location. So the game is very simple. I will play the song for you and you have to call up and tell me what the correct Hindi song for that is, which it sounds like, because bahut sare gaane aise hain. Theek hai? So, here we go. This is my number is 972-235-5555. And here we go.

0: Hi, yes, I can.
1: Okay, first of all, tell me your name, and second, do you have the correct answer?
0: Hello.
1: Hello, can you
0: My
1: hear
0: name
1: me?
0: is.
1: Yes.
0: Yeah, my name is Ayushi.
1: Okay,
0: And
1: Ayushi, go for it.
0: I think the correct answer is ना जाने कहाँ से आई है
1: That is
0: from
1: absolutely correct. Yeah, थोड़ा सा गा भी दो यार, साथ में गाते हैं. Ready? One, two,
0: ready.
1: one, two. ना जाने
0: जाने
1: कहाँ से आई
0: कहाँ
1: है,
0: से
1: ना
0: आई है, ना
1: जाने
0: जाने
1: कहाँ वो
0: कहाँ
1: जाएगी
0: से जाएगी
1: दीवाना,
0: दीवाना,
1: किसे
0: किसे
1: बनाएगी वो
0: बनाएगी वो
1: लड़की.
0: लड़की.
1: That is absolutely
0: थैंक यू.
1: correct, guys. Okay, आयुषी, congratulations. Stay on the line. मैं एक गाना लगाती हूँ, ठीक है? और यू स्टे ऑन द लाइन, क्योंकि मैं एक गाना लगाती हूँ फटाफट से, सो दैट आर ऑडियंस कैन लिसन टू समथिंग. एंड आप लाइन पे बने रहिए. ओके
0: यस सर.
1: ओके, लेट्स गो गाइस, एंजॉय द सॉन्ग.

एंड फ्रेंड्स, वी आर बैक। भाई पहले के जमाने में ना जो गाने होते थे, स्पेशली जो 80s 90s के जो गाने होते थे, इतना लंबा लंबा म्यूजिक सेक्शन डालते थे ना बीच बीच में, एंड सम ऑफ इट डिड नॉट नेसेसरली मेक सेंस, बट इट वाज जस्ट एंटरटेनिंग। एक एक गाना 6-6, 7-7 मिनट का गाना होता था, और अभी कई बार सुन के लगता है लाइक व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस। समटाइम्स सॉन्ग्स आर जस्ट स्ट्रेंथन बिकॉज मे बी नॉट स्ट्रेंथन लेंथन क्योंकि मे बी द सिचुएशन इज सच कि आपको गाना खींचना पड़ता है। भाई लाइव में तो हम वो बहुत करते हैं। आई एम अ प्रोफेशनल लाइव म्यूजिशियन विच आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो बाई नाउ, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। आई हैव ए बैंड इन डैलस कॉल्ड द डैलस बॉलीवुड प्रोजेक्ट। वी डू वेडिंग्स एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड लॉट ऑफ लाइव परफॉर्मेंसेज। अगर आपको मेरे बैंड के बारे में जानना है तो यू जरूर गिव अ कॉल, या फिर यू कैन चेक अस आउट ऑन dallasbollywood.com या फिर एनीवेयर ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब एज डैलस बॉलीवुड प्रोजेक्ट। भाई उसके अलावा मोस्ट ऑफ यू डोंट नो दैट आई एम एक्चुअली ए ब्लूज म्यूजिशियन। ब्लूज क्या है? इट्स एन अमेरिकन म्यूजिक जॉनर, एंड ऑनेस्टली दैट इज वॉट गेव मी द स्टार्ट हियर इन अमेरिका वेन आई फर्स्ट, even before I moved to America. I mean, my music career started with the blues because it was so accepting to me, and I was doing this back in India, and I got to perform at such amazing music festivals and everything. It was the most incredible, like, 5-6 years of my life that I got to live with my blues journey. So I'm actually doing that again. On 1st of August, I'm actually performing with my band at Steve's Wine Bar in Denton. It's going to be a great show. It's International Blues Day, and I'm celebrating it with my friends and my band, and we're going to do a beautiful set with an open jam. So, agar aapko blues songs aate hain, if you know B.B. King, Muddy Waters or any of these artists, and you want to jam and come on, sing a few songs or just play some guitar or just listen to some great music, American, great American music, then you should come on down. Theek hai? क्योंकि बॉलीवुड गाने तो हमेशा सुनते रहते हैं, थोड़ा ब्लूज भी सुन ले, समथिंग फ्रॉम द मिसिसिपी डेल्टा, न्यू ऑरलीन्स रीजन, है ना। तो गाइज, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स क्विकली गो इनटू आवर थर्ड गिव अवे, बिकॉज जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आवर थर्ड गिव अवे इज फ्रॉम इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ। हियर इज योर चांस टू विन ए ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ। एक्चुअली यू नो वट, मैं आपको वी विल डू दिस गिव अवे आफ्टर द सॉन्ग। लेट्स कम बैक एंड कीप लिसनिंग।

0: That is right. We are back in our giveaway. जैसे मैंने आपको बोला था, we have एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन giveaways. दो giveaways हमारे हो चुके हैं. This is our last giveaway from India Bazaar in Fort Worth. You can win a grocery hamper from India Bazaar in Fort Worth by answering this one simple question. Guys, कल हम लोग कर रहे थे कि we were doing dawn dialogue. So you know what? Continuing with that theme, I'm going to give you another dawn ka aadha adhura dialogue. Aur aapko wo complete karna hai. And then you have to tell me what the full dialogue is exactly the way it is. Theek hai? To kya aap jeet sakte hain India Bazaar Fort Worth se? Your one-stop destination for Indian groceries, fresh produce, spices, snacks and all your desi essentials at India Bazaar located at 5152 Quadrant Way in Fort Worth. This is for people living in Fort Worth, Keller, Hurst and Haslett. So guys, Complete the Dialogue is a super simple game. I will tell you half a dialogue from this iconic movie called Dawn, which you all know. I know. Not the Nai Wali Dawn, Purani Wali Dawn, Amitabh Bachchan Wali, the OG. Okay? And you have to complete it and tell me exactly. So khele, my number is 972-235-5555. So here we go. Okay. हमने कल जो डायलॉग बोला था वो वाला नहीं है, दिस इज अ न्यू वन. सो हियर वी गो. डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती है कि वो सिंपल डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती है कि वो कंप्लीट द डायलॉग. कॉल मी, आई एम वेटिंग. एंड वी हैव आवर फर्स्ट कॉलर. हाय, कैन यू हियर मी? यू आर ऑन एयर.
1: यस.
0: ओके, पहले तो अपना नाम बताइए एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर.
1: सिद्धार्थ.
0: सिद्धार्थ, ओके. सिद्धार्थ, गो फॉर इट. आपने पिछले एक महीने में कोई गिव अवे तो नहीं जीता हमसे?
1: नहीं, कुछ नहीं जीता मैं.
0: चलो, गो फॉर इट. तो मैं आधा बोलती हूँ. डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती है कि वो
1: डॉन का दुश्मन है.
0: क्या बात है सिद्धार्थ, कांग्रेचुलेशंस, आप जीत चुके हैं इंडिया बाजार से गिव अवे. On the line, I'm going to take your information, guys. तब तक आप ये गाना सुनिए.
1: Sure.
0: Since we are going with the Amitabh Bachchan theme.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
6: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
5: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
6: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
2: Hello guys, this is me, Kinjal Dave, and you are listening and watching Fun Asia Radio.

गाइज, इट इज़ 9:47 ऑन द क्लॉक. मेरा टाइम हो गया है जाने का, क्योंकि मैं आपके साथ सिर्फ 10 बजे तक ही होती हूँ. तो मैं 10 बजे तक आपके लिए गाने बजाऊंगी. मैं अभी बातें कम कर रही हूँ, एज आपको पता ही होगा मेरी आवाज़ सुन के कि अभी मेरी आवाज़ पूरी तरह से थक चुकी है, बिकॉज आई एम स्टिल टेक्निकली रिकवरिंग फ्रॉम वट एवर हैपन्ड इन द लास्ट फ्यू डेज. क्योंकि हमारा थीम था विशाल शेखर, दिस इज़ इन लाइन विद आवर थीम. तो मैं आज कोई गाना सुन रही थी, आई वॉज प्लेइंग समथिंग फॉर यू, और सुनते सुनते मैं कहा यार ये गाना तो बहुत अच्छा था. आई यूज टू लव दिस सॉन्ग. दिस इज़ फ्रॉम दी अर्ली 2000s व्हेन करीना कपूर वॉज स्टिल नॉट दैट बिग ऑफ अ नेम, यू नो, शी वॉज जस्ट कमिंग अप.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Fun Asia
3: This week every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week plus 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99 and 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99 so grab your squad grab your table and don't miss the final kick Fun Pizza Kitchen Frisco offer valid till 19 July only
4: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: बॉलीवुड टैग फनेशिया।
1: What's up, ladies? Have you met my friend Harry?

0: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
1: Beta, 95% aaye?
2: Haan, mummy.
1: Good. अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए
3: मेरा
1: हाँ प्रॉफिट मार्जिन कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस गोल्स सारे अकाउंट्स अपडेटेड
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintechs.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
5: हाय दिस इज कुणाल कपूर एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया.
4: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
5: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we're not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
6: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
7: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है.
8: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त. जब गाने हो जबरदस्त. Only on Fun Asia Radio.
9: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia 104.9 FM.

रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि संगीत की ये सवारी आपको कहाँ तक ले जाएगी। सुरों का सफर, आपका हम सफर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

तन्हाई में अकेले में महफिल में और मेले में आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi, this is Akshay Kumar, and you're listening to Funasia Radio.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनीशा रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: Thank you, brother. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज स्कूल में नहीं जाना है।
0: अरे क्यों?
1: नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता।
0: बेटी देखिए आप कुछ दिन यहाँ रहिए, आपको अच्छा लगने लगेगा। और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ।
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता।
0: नहीं आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन, समझे?
1: मैं आपकी

0: वेरी गुड। और ये कौन है?
1: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
0: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

तुम्हारे गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूँ।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनी शो रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: डैलस, आर यू रेडी? जाबो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Hi, this is Janvi Kapoor, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Panacea Radio.

0: bringing the community together. Fun Asia Radio, 104.9 FM.
1: और इस तरह बल्ली को भी अपनी रानी मिल गई, वीरे की गीत से वेडिंग हो गई और शादी में घोड़ी के सबसे आगे नाचे मामा जी और भांजा जी।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: de hoy.
1: सॉरी
0: हम ठीक हैं।

0: तमाशे थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: कुछ बदल गया है।
1: नहीं तो?
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

0: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
2: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
3: Storming into a million hearts, 104.9 FM, number one hit station.

0: दुनिया डूबे ना। एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.
2: Aha, what a big ball.

Bringing South Asia closer, more closer. Phonasia, 104.9 FM.

playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.

0: कितने आदमी थे?
1: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: Rest a while and run a mile with FunAsia Radio.
1: Hey,

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
2: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
3: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ, पर क्यों? क्योंकि ये देखो #you #ouch #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसे कूदने से पहले उसे बता के तो जा।
0: क्या

0: Storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.
1: हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है।
2: कुछ कॉमन होना जरूरी है क्या?

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
1: Yeah,

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Heere moti, main na chahu.
8: Achha, manifest karne se pehle thoda dobara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
9: जिंदगी एक रंगमंच है
10: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
11: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com।
12: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
13: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
12: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy।
13: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn। समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 945-527-0897 और विजिट astrologereeshwar.com।
14: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
15: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
16: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
17: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
18: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
19: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
17: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
7: बेटा, 95% आए?
15: हाँ मम्मी।
7: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
6: मेरा?
7: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
6: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
10: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: Tara wo tara har tara.
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है।
19: तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
11: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
20: Ladies and gentlemen, welcome to the show on this Thursday morning. सबसे पहले तारीफ उस ऊपर वाले की जिसने दुनिया बनाई, चांद सितारे बनाए, जमीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया। उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम।

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duck time.
5: Pritesh, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
6: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
5: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
6: वेट, व्हाट?
7: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
8: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
7: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
9: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
7: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
9: कहाँ?
10: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट DY एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
7: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, one vibe.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
11: क्या मतलब?
12: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
12: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
13: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
15: It's Lawson.
14: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
15: It's Lawson.
14: Daddy, what is the law?
16: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-61-2458. The travel experts. Lawson Travel.
17: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
18: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
19: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
18: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
19: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
1: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
2: Hi, this is Stephanie Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

0: It is 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: क्रेविंग डिलिशियस इंडो चाइनीज एंड नॉर्थ इंडियन फूड, रेड हॉट चिली पेपर इज द प्लेस टू गो, विद लोकेशंस इन फ्रिस्को, मकीनी, नॉर्थ इंडियन कुजीन।
13: अरे यार, घर मिल गया।
14: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
15: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
14: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
15: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
16: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
17: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
18: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
17: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
18: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
17: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
18: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
17: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
19: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
20: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
21: फैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
20: विजिट फैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
22: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
23: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
22: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
23: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
22: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
24: इन प्लेनो।
22: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
25: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
0: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.
1: If you are just joining us, please receive my very warm welcome to the show. We will get you caught up, and of course, plenty of information headed your way, and all the music you want to listen to right here on the airwaves of the Fun Asia Network on this lovely Thursday morning. It's the 16th of July.

0: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
1: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
3: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ अगस्त, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
4: मैं हीरो।
5: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
5: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
6: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
7: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
6: नहीं।
7: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
6: नहीं।
7: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
6: वो भी नहीं।
7: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
10: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL, and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
11: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
12: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
13: Calculating route, rerouting.
12: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
13: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
12: क्यों?
13: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
12: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
14: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
13: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
15: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। Choctaw Casino and Resort Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

0: I'll have the world news coming for you right after mascara.
1: Queen Victoria की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? तो वैसे ही लगेंगी.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai.
3: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
4: Tarikh par tarikh.
5: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
3: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco, offer valid till 19 July only.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कॉम्पिटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
15: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
16: मेंशन फनएशिया एंड गेट 50% ऑफ ऑन ट्रायआउट सेशन।
17: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 years or older to game.

0: That, ladies and gentlemen, is my show for today. I do hope that you enjoyed it as much as I love bringing it to you every morning from 7 to 10 right here on the Funasia Network. This, of course, is the Funasia Radio. We also have the Telugu Radio, Radio Sangam, Tamil Radio, Radio Vanakkam, and Apna Punjab, along with Radio Caravan. Five radio stations for you, 24 hours a day. And that is the Funasia Network. For those of you who'd like to reach me directly after the show, 214-675-1754. And it is 10 o'clock.
1: This is the Funasia Network. You are listening to Funasia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Funasia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
5: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
7: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
8: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
9: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
8: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
10: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
11: इट्स लॉसन।
10: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
11: इट्स लॉसन।
10: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
12: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
13: ये तारा वो तारा हर तारा।
8: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
15: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
14: सच में सब संभाल लेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
8: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन partner.

यू आर ट्यून इन टू गपशप गली विथ मी टू। आज की तारीख 16 जुलाई, घड़ी में बजे हैं 10:09 और बस 5 सेकंड में 10:10। तो बिल्कुल कांटे से कांटा मिला लीजिए और जी हाँ, ताल से ताल मिला लीजिए, बिकॉज सम ऑफ द अमेजिंग मोस्ट सॉन्ग्स फ्रॉम बॉलीवुड एंड द देसी म्यूजिक स्पेस दैट वी गेट फॉर यू राइट हियर। दिस इज फनीशा रेडियो 104.9 FM। और हाल ये है कि हाल बेहाल है, यानी कि बड़े जोरों की नींद आ रही है यार, जिनको जो मेरे साथ अभी इसी कैटेगरी में फॉल होते हैं कि जहाँ पर नींद बड़ी कसके आ रही है लेकिन दिन पूरा बाकी है अभी, वो प्लीज़ कॉल करो यार। आई वॉन्ट टू नो कि वॉट इज़ मेकिंग यू गोइंग टुडे। 9722355555 कुछ गपशप करते हैं यहाँ पर, कुछ बातें होंगी मूवीज को लेकर, कुछ बातें होंगी हमारे कुछ वापस आते हुए ट्रेंड को लेकर, और कुछ बातें होंगी फीफा को लेकर। दिस इज गपशप गली विथ मी टू।

लिसन, क्योंकि ये गाना प्ले हुआ है, बस यूं ही मुझे ना एक और गाने की याद आ जाती है. एक्चुअली द टाइटल इज़ यूं ही, और वो गाना मैं इन कंजंक्शन प्ले करना चाहती हूँ. एंड स्वाति, आई हैव योर रिक्वेस्ट डाउन. इन द नेक्स्ट सेगमेंट आई प्रॉमिस आई एम गोना प्ले इट फॉर यू. उन्होंने कहा कि जब थोड़ा सा ना मतलब ऐसा मौसम हो रहा हो एंड बहुत ज़्यादा, अगर जैसे आपको मेरी तरह अगर नींद आ रही है ऑलरेडी, बहुत तेज़ वाली नींद आ रही है, तो उन्होंने कहा कि ये गाने थोड़े से और ड्राउजी बनाते हैं. तो यस, लेट्स गेट यू अप एंड वील प्ले योर सॉन्ग इन अ लिटल बिट स्वाति, अब क्योंकि मूड और माहौल कुछ ऐसा है. सो लेट्स गेट दिस राइट अवे, अ ब्रेक के बाद योर सॉन्ग कमिंग अप.

Swati, I hope you are happy because this is what we want to bring on the airwaves of Funisha Radio. कि आप जो सुन रहे हो आपको वो सुन के मजा आए, इसीलिए स्टूडियो का नंबर हम हमेशा हैंडी रखते हैं आप लोगों के लिए 972-235-5555. और अगर मैं आपका फोन नहीं उठा रही हूँ कभी, क्योंकि ये कंप्लेन मुझे मिली है, और मैं आपको बता दूं कि द रीजन इज ईदर आई एम ट्राइंग टू लाइन अप द नेक्स्ट सॉन्ग, या मैं किसी से बात कर रही हूँ, वन ऑफ द लिसनर से ही बात कर रही हूँ, या मैं अपना कुछ रिसर्च कर रही हूँ अबाउट द शो. सो यस, वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो. ऑलराइट, एक खास जगह की बात करने वाली हूँ जो 13 साल से आपको सर्व करते आ रहे हैं, हमारी कम्युनिटी को सर्व करते आ रहे हैं, एंड दैट्स टेक्सास प्राइमरी केयर. दैट आई वांट टू मेक श्योर दैट यू ऑल आर अवेयर ऑफ द मिशन ऑफ मनदीप आचार्य MD and the team is to contribute and enhance the health and well-being of the community. Our high-quality primary healthcare har patient ko mile, yehi inki koshish hoti hai. Aur inki koshish hai the focus on acute and chronic medical conditions such as high blood pressure, asthma, heart and kidney disease, high cholesterol, diabetes, cancer screenings and other related conditions in adults that they focus on. Aur iske alawa preventive approach to healthcare जो होता है, यानी कि एनुअल फिजिकल्स, रूटीन वैक्सीनेशंस, वेट लॉस सपोर्ट, ये भी करते हैं. एंड ऑफ कोर्स यू नो, इन हाउस लैब टेस्टिंग भी इनकी होती है जो नेसेसरी है, इंक्लूडिंग एलर्जी टेस्ट एंड ऑल्सो थायराइड पैनल्स. और इसके अलावा दे इफ यू यू नो एज अ पेशेंट रिक्वायर अर्जेंट केयर, तो क्लिनिक वॉक इन प्रोवाइड्स करती है, एंड विच मीन्स कि आपको अपने अपॉइंटमेंट्स राइट अवे मिलेंगे. सो देर आर मल्टीपल रीजंस दैट यू शुड बी गोइंग टू देयर ब्रांड न्यू एंड अ सेकेंड लोकेशन ऑफ टेक्सास प्राइमरी केयर, इंट्रोड्यूसिंग लूनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाई डॉक्टर मनदीप आचार्य. और याद रखिएगा, दे आर ओपन 7 days a week फ्रॉम 8 AM टू 8 PM. एज आई सेड, वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट्स नीडेड. वॉट वी नीड राइट नाउ इज अनदर सॉन्ग विच इज ऑल अबाउट लव. अगर पिछले गाने में कुछ इटालियन फ्लेवर था, इसमें कुछ फ्रेंच.

उस फ्रेंच फ्लेवर के बाद अब थोड़ा सा स्पैनिश भी हो जाए. व्हाट से यू आर ट्यून्ड टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. और यहाँ पे ना गपशप गली विथ मीठू पे आपको बताना चाहती हूँ एजी फिनटैक्स के बारे में, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द US. एंड दिस पार्ट ऑफ माई शो इज ब्रॉट टू यू by AG Fintax. Whether you are an individual, a startup or an established business, AG Fintax जो offer करता है वो है innovative financial solutions जो बिल्कुल tailor made होता है आपके needs के मुताबिक. From bookkeeping, payroll accounting and bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting and business advisory services. They help keep your finances absolutely organized, compliant and future ready. Bilkul trusted hain, efficient hain aur committed towards your success that they are. AG Fintax is your partner in building a stronger financial future. 469-942-9888. Definitely give them a call. Going to the website will give you lots of information. But if they are right for you or not is basically what that phone call is for you. 469-942-9888. And once again, agfintax.com is the website.

0: And it is, ladies and gentlemen, a day that started off pretty dry for many of us. Dallas Fort Worth area की बात कर रही हूँ यहाँ पर. West में कुछ shower और thunderstorm activities हमने सुबह से देखी, and everyone in North Texas will want to grab an umbrella on their way out the door, क्योंकि chances हमारे बारिश के scattered showers और storms के आज पूरे दिन बने रहेगा. और इसी के कारण temperatures हमारे जो है 80s में, higher 80s में जो हमें मिलने वाले हैं फॉर ए हाई दैट वी विल हैव टुडे. नाउ एक्सपेक्ट ड्रायर कंडीशंस टुमारो. बहुत कम चांसेस होंगे शावर थंडरस्टॉर्म के, मेनली नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ द मेट्रोप्लेक्स. इफ देयर इज एनी चांस, इट इज इन दोज एरियाज, नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ द मेट्रोप्लेक्स. टेम्परेचर्स विल रिटर्न टू द 90s एंड दोज हॉटर टेम्परेचर्स की बिल्डिंग इन टू द वीकेंड. और मंडे तक फिर हम ट्रिपल डिजिट टच करने वाले हैं, एंड दैट विल कंटिन्यू द एंटायर नेक्स्ट वीक. और जी हाँ, हमारे रेन चांसेस भी डिमिनिश हो रहे हैं फ्राइडे के बाद. सैटरडे संडे से सब ब्राइट एंड सनी एंड हॉट टेम्परेचर्स दैट वी आर गोइंग टू सी हियर इन डैलस फोर्ट वर्थ एरिया. सो येस, दैट्स योर टेम्परेचर टुडे. And today's, high will be around 88 that we will have, and low will be around 75. Keep listening to Funisha Radio 104.9 FM, bringing the community together. Milte hain break ke baad.
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
3: बेटा, 95% आए?
4: हाँ मम्मी.
3: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
5: मेरा?
3: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
7: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
7: ये क्या होता?
8: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
10: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
11: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
12: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
11: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
12: वेट, व्हाट?
10: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
13: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
10: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
14: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
15: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
14: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
16: रुको जरा, सबर करो.
17: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है. Stay tuned to Funisha.
18: Tracks that put you on the right track.

दिस सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म तेरे बिन लादेन, जो कि आज ही के दिन रिलीज हुई थी इन द ईयर 2010. गेस व्हाट, दिस इज अ सेगमेंट जहां पर आज के दिन सिनेमा हिस्ट्री में क्या रिलीज हुआ था, कुछ ऐसी फिल्म्स लेकर आते हैं. दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ देम. अभिषेक शर्मा ने लिखा भी एंड इट वॉज हिज डिरेक्टोरियल ऑल्सो, एंड इट वॉज अली जफर्स डेब्यू इन बॉलीवुड. एंड ये फिल्म वर्ड ऑफ माउथ के कारण काफी अच्छी चली एंड इट वॉज ए सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस. Is definitely a movie that's worth a watch, satire comedy film that it was. और इसकी कहानी basically अली जफर playing a पाकिस्तानी reporter और उनका जो desperation था to migrate to the US और एक fake ओसामा बिन लादेन का video बनाकर look like के साथ बनाकर उन्होंने ये sell करने की कोशिश की. और फिर क्या हुआ आगे, ये सारी चीजें जानने के लिए you have to watch it because people have enjoyed it, although it wasn't released in the US or Pakistan, but this film did pretty well at the box office and it is considered a successful film and a cult classic for sure. And Ali Zafar ka bhi unki bhi acting ki bahut tareef hui thi is film ke liye. So yes, this is something that you might want to check out if you want those big laughs from this very small budget film and yes, a successful one. Talking about which, word of mouth wo ek aisa super power hota hai jo kitni bhi aap promotion kar lo na wo usse nahi hota. Agar film achhi hai aur logon ko pasand aayi to ye cheez phailne mein waqt nahi lagta. Aur aisa hi kuch hua tha एक फिल्म के साथ जो आज ही के दिन द सेम डे एज तेरे बिन लादेन रिलीज हुई थी, दैट इज द ईयर 2010 एंड दैट्स द फिल्म उड़ान, जो कि विक्रमादित्य मोटवाने ने रिलीज की थी. एंड ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी, दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू. एंड व्हाट ए डेब्यू दैट वाज. ये फिल्म जो थी इसकी स्क्रिप्ट लिटरली 7 साल तक इंडस्ट्री में घूम रही थी कि क्योंकि कोई प्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे, किसी से बैकिंग नहीं मिल रही थी. किसी मेजर स्टार का ना होना वाज डेफिनेटली वन ऑफ द रीजंस. एंड कहानी कुछ अलग थी, ये भी एक रीजन था. इट फाइनली गॉट मेड ऑन अ वेरी टाइनी शू स्ट्रिंग बजट ऑफ जस्ट अराउंड 4.5 crores. और इनिशियल बॉक्स ऑफिस नंबर्स वर वेरी लो, लेकिन जी हाँ, वर्ड ऑफ माउथ के कारण इतना स्ट्रॉन्ग था थिएटर्स में ये शो कि शोज बढ़ाने पड़े इस मूवी के लिए. एंड इन द एंड विद द सैटेलाइट एंड टीवी राइट्स इट वाज डिक्लेयर्ड ए कमर्शियल सक्सेस. फ्रॉम स्ट्रगलिंग टू गेट मेड टू बिकमिंग ए कंप्लीट कल्ट क्लासिक, ये अपने आप में एक ट्रू डेफिनेशन है ऑफ व्हाट ए स्लीपर हिट इज. फिल्म का नाम उड़ान एंड ग्रेट म्यूजिक इन दिस फिल्म बाय अमित त्रिवेदी.

दिस इज अ सेगमेंट ऑन दिस डे इन सिनेमा हिस्ट्री और आज की तारीख है 16th of July और उड़ान जो है वो रिलीज हुई थी आज ही के दिन इन द ईयर 2010 16 July 2010. सो फास्ट फॉरवर्ड टू July 16, 2021 और फरहान अख्तर की तूफान उसी दिन तो रिलीज हुई थी एंड दिस वॉज राइट इन द मिडल ऑफ द पैंडमिक बाय द वे. सो द एंटायर रिलीज स्ट्रैटजी हैड टू बी चेंज्ड. जो मैसिव थिएट्रिकल एक रोल आउट होने वाला था उसे completely Amazon Prime pe move kar diya gaya and Farhan put himself through absolute torture for the film as he does for every other film. Lekin sports drama ke liye ye demand kuch alag hi level ki hoti hai because Rakesh Om Prakash Mehra was at the helm of it. He was the director of this film and unke saath Farhan Akhtar ne, we all know he did Bhaag Milkha Bhaag and what an amazing film that turned out to be. Ab ye film jo hai jiska naam hai Toofan, it might not have been that big a blockbuster और शायद ये समझना मुश्किल है क्योंकि pandemic के time पे release हुआ था एक तो and then secondly it was an OTT release तो इसीलिए ये exact numbers बताना release है but it definitely broke massive streaming records for Amazon Prime India during its opening week and it was exactly the kind of gritty comeback story everyone probably needed at that time. और तूफान जो कि राकेश ओम प्रकाश लेकर आए थे, वन कैन इमेजिन दैट यू नो इट वुड बी ए स्टोरी वेल टोल्ड. और जहां फरहान अख्तर हो यू कैन इमेजिन, क्योंकि कहा जाता है कि एक बॉक्सिंग सीन में ही ब्रोक हिज नकल्स लेकिन उसको भी टेप करके वो ही कंटिन्यूड द शूट जस्ट बिकॉज ही डिडंट वांट टू लूज ए डे ऑन सेट एंड इट वुड बी अ मेजर लॉस फॉर एवरीबडी राइट. सो ही कंटिन्यूड as professional and sporty that he is, absolutely fit for the role of Tufan.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: Documents ya parcel bhejni hai?
9: हाँ, घर रिलोकेट करनी है?
8: हाँ,
9: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
8: हाँ भाई हाँ।
9: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
10: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
15: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
16: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
17: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
18: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
19: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
17: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
20: माय टाइम इक्वेरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
21: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial
4: financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth at mytimeequity.com for professional advice.
21: Weekend ka plan abhi tak nahi bana? Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement. Sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
22: Tracks that put you on the right track.

जी नहीं, ये पुराना गाना नहीं है, ये आज की सेंचुरी का मॉडर्न सॉन्ग विच हैज दैट फ्लेयर ऑफ रेट्रो एंड हाउ ब्यूटिफुल इज दैट टू कैप्चर दैट वाइब यू नो. और बस हम ऐसे ही कुछ बात करने वाले हैं क्योंकि क्या है ना कि आज की दुनिया ऑब्सेस्ड है नेक्स्ट बिग अपडेट के लिए कि AI ब्रेक थ्रूज क्या हो रहे हैं और यू नो दुनिया भर में नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है एंड ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग. येट वो जो एक हमारा एक क्रेविंग है फॉर द ओल्ड कंफर्ट ना, दैट इज रिटर्निंग एंड दैट इज सो अमेजिंग टू सी. उसी के बारे में इस सेगमेंट में बोलेंगे. तो सोचा मैंने कि कुछ ऐसे गाने लगाते हैं विच आर एब्सोल्युटली आज के गाने लेकिन वो रेट्रो फ्लेवर्स इंटैक्ट रखते हुए, ठीक है ना. तो चलिए, आपके लिए एक ट्रिविया है राइट नाउ एंड दिस इज अ गिव अवे दैट यू कैन विन लेडीज एंड जेंटलमैन. तो हाथ आपका सीधे फोन पे जाना चाहिए 9722355555. एक गाना प्ले करने वाली हूँ और गाने में एक जो लाइन है वो कुछ लाइन्स एक्चुअली मैं कंप्लीटली म्यूट आउट करने वाली हूँ इन द सेंस आई एम गोइंग टू प्ले समथिंग एल्स ऑन इट एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट द लिरिक्स ऑफ दैट पोर्शन इज. वो जो मिसिंग है ना, फिल इन द ब्लैंक्स करना है बेसिकली आपको. डिड यू गेट दैट? यू विल गेट इट व्हेन आई प्ले द सॉन्ग. वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग लेडीज एंड जेंटलमैन. वही मतलब कि आज का गाना लेकिन बिल्कुल पुराना फ्लेवर लिए हुए ये गाना जो इतना मशहूर हुआ, दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू प्ले फॉर यू. और यहाँ पे आपको आपके लिए जो गिव अवे है, इट इज फ्रॉम द वाइब रेस्टोरेंट एंड आपके लिए एक फ्री आइटम फ्रॉम देयर अपस्केल इंडियन रेस्टोरेंट लोकेटेड इन साइड फूडिस्तान. नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर फ्रेश इंडियन ग्रोसरीज या हलाल मीट या फ्रेश प्रोड्यूस या बेकरी आइटम्स या लाइव पानी पूरी या फ्रेश गन्ने का जूस, तो आपके लिए ये एक्सपीरियंस है एंड इवन एन अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस दैट यू कैन गेट इन साइड फूडिस्तान इन ऑबरी. लेडीज एंड जेंटलमैन, वो द वाइब है दैट अपस्केल इंडियन रेस्टोरेंट दैट यू मस्ट ट्राई आउट. और आप में से किसी एक को एक फ्री डिश मिलने वाला है वहाँ से. सो येस, लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड. यू जस्ट नीड टू गिव मी अ कॉल राइट हियर 9722355555. और ये मिल सकता है अगर आप रिक्त स्थान की पूर्ति करो. जी हाँ, हमारे हिंदी के एग्जाम पेपर में यही आता था, फॉर फिल इन द ब्लैंक्स. सो येस, फिल इन द ब्लैंक्स. ये रहा वो गाना जिसका जिसका आपको जिसके लिए आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है.

0: जाने बलमा घोड़े
1: यू
0: की
1: नो
0: क्यों
1: यू आर
0: कमांड है।
1: एब्सोल्युटली राइट बट नॉट द करेक्ट लिरिक्स, सो आई हैव टू टेक द नेक्स्ट कॉलर हियर। आई एम सो
0: हाँ जी
1: सॉरी,
0: जरूर,
1: थैंक यू। एंड आवर नेक्स्ट कॉलर इज, यस, यू आर लाइव ऑन
0: मिट्टू
1: एयर।
0: जी,
1: हाँ जी,
0: मिट्टू जी, मेरे को कोई खाना की कूपन नहीं चाहिए। थैंक यू। मेरे को एक ही कंप्लेन है
1: जी
0: कि हम लोग के लिए कोई गाना बजाओ और ऐसा क्वीज रखो कि हमारे कुछ गाने, ये गाना पहली बार सुना मैंने। हाँ
1: ओ रियली? अच्छा, ये गाना एक बहुत ही पॉपुलर गाना बन चुका है, वायरल हुआ था जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, एंड द नेम ऑफ द फिल्म इज कला। और ये गाना आप अक्सर सुनोगे हमारे शोज पे, जब रिलीज हुआ था तब तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुनते थे। लेकिन यस, दिस इज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग विच हैज़ दैट रेट्रो फ्लेयर टू इट। सो यस, इफ यू एनी टाइम नीड टू लिसन टू दिस सॉन्ग और एनी अदर सॉन्ग विच हैज़ दैट रेट्रो फील, येट इज इट इज अ मॉडर्न सॉन्ग, वी वुड बी हैप्पी टू प्ले। एक्चुअली हम 90s के बाद के गाने लगा सकते हैं, तो दैट इज द लिटिल डिस्क्लेमर दैट वी वॉन्ट टू पुट फॉरवर्ड। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड अभी भी मेरी तलाश जारी है एज टू वॉट आर द लाइन्स। यू आर लाइव ऑन एयर।
0: हेलो, कोई
1: हाय, डू यू नो द मिसिंग लिरिक्स?
0: कहते उन्हें समझाए सजनिया के मन में। वन सेकेंड,
1: अभी
0: कहते

0: जाने भले माँ घोड़े पे क्यों सवार है।
1: लिसन, यू वर टेरिफिक। आपने लिरिक्स तो सही बोले ही, लेकिन आपने गाया कितना अच्छा यार। व्हाट्स योर नेम?
0: माय नेम इज लाया।
1: लया। थैंक यू सो मच। वाकई में लय

0: लिसन, यू वर टेरिफिक. आपने लिरिक्स तो सही बोले ही, लेकिन आपने गाया कितना अच्छा यार. व्हाट्स योर नेम?
1: माय नेम इज लया.
0: लया, थैंक यू सो मच. वाकई में लय और सुर दोनों ही था आपके गले में. क्या जतन से गाया आपने, मजा आ गया. एंड आई लव द लाइन हियर जहाँ पे ना दुल्हनिया के खुलते हृदय के द्वार है. दिस इज सो रेट्रो, दिस इज सो येस्टर ईयर्स, राइट? वो लिरिक्स भी कुछ वैसे ही लिखे गए हैं. थैंक यू जी, थैंक यू. होल्ड द लाइन, क्योंकि द वाइब से आप जीत चुकी हैं अपने इस रेट्रो वाइब के लिए दिस फ्री डिश फ्रॉम देयर्स. Hold the line. I'm going to take all your details. In the meantime, let's get this song going for all our listeners.

Listen, what a composition this is. Hats off to Amit Trivedi. And of course, that touch of retro voice that Shirisha had. Shirisha Bhagwatullah, Indian Idol participant that she was, I remember. And I have been following Indian Idol a whole lot, all my life practically. Jab se shuru hoga, tab se hi mere khayal se. Lekin this is what it is for musicians to choose just the right voice. And I think she was definitely the right voice for it. And हमारी जो सिंगर थी ऑन एयर आके जिन्होंने इस गाने का क्विज जीता, इट इज लया. एंड लया, यू वर अ फैंटास्टिक सिंगर. बहुत मजा आया आपको सुन के. अच्छा, एक और गाना विच हैज दैट रेट्रो वाइब, आई एम गोना प्ले फॉर यू नेक्स्ट. लेकिन ये सारी हम बातें कर क्यों रहे हैं, आज का मॉडर्न टाइम, लेकिन वो रेट्रो फ्लेयर जिन गानों में है वो प्ले कर रही हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? ये मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हम फ्यूचर की नहीं बल्कि पास्ट की बात करने वाले हैं. बिकॉज राइट नाउ द पास्ट इज द न्यू फ्यूचर. क्योंकि क्या आप जानते हैं दैट ओल्ड स्कूल एनालॉग टेक इज मेकिंग अ मैसिव डेटा बैक कमबैक. लेट्स स्टार्ट विद द ओजी वाइनल रिकॉर्ड्स, जिनकी मार्केट में एक अलग ही वेव चल रही है. आपने अगर नहीं कैच किया है तो जरूर जाके ऑनलाइन पता करने की कोशिश करें. द वाइनल रिवाइवल इज इनक्रेडिबली रियल गाइस. रीसेंट रिपोर्ट्स के अगर हिसाब से मैं चलूँ तो US वाइनल सेल्स ने ऑफिशियली $1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया है, मेकिंग

up almost 50% of the physical music market. Can you believe that, really? People don't just want to stream music invisibly anymore. Unhe wo feel chahiye, wo experience chahiye, wo album ko haath mein pakadne ka wo ehsaas chahiye, record ko lagana aur fir us warm analog sound ko enjoy karna. That is what this generation wants, the Gen Z wants. Every major artist today is dropping their new music on vinyl, ladies and gentlemen, and I am proud to say I have vinyl records as well. Aur aap jante hain mera pehla रिकॉर्ड कौन सा था जो मैंने खरीदा था, इट वॉज यू नो एड शीरन्स. क्यों? क्योंकि उसमें मुझे अरिजीत सिंह के साथ उनका जो वो सैफायर गाना था वो चाहिए था. इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग दैट वाइनल रिकॉर्ड्स आर कमिंग बैक एंड हाउ, लेडीज एंड जेंटलमैन. कुछ और ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ इस सेगमेंट में और अगले सेगमेंट में भी.

talking about the old trends that are coming back, ladies and gentlemen, thanks to Gen Z. They are doing it in a big way. तो vinyl records के बारे में जो बोल रही थी, वो वापस से जिस तरह से आया है, ये it is here to stay for sure. एक ना वो nostalgia factor लेकर आता, और ये है nostalgia express, ladies and gentlemen, on Gupshup Gali with me too. तो एक और nostalgia की बात करने वाली हूँ है, वो है audio cassettes, ladies and gentlemen. Oh my god, I was crazy happy and then very very sad. I'll tell you why. जब मुझे पता चला कि ये audio cassettes का craze जो है वो वापस आ रहा है, मुझे ना बड़ा मज़ा आया सोच के, लेकिन बड़ा दुख हुआ कि यार मैंने तो अपने सारे audio cassettes, I've disposed them off, क्योंकि एक बड़ा box था and it was taking up lot of space and eventually I think मैंने केवल एक या दो audio cassettes संभाल के रखे हैं. I don't even remember वो कौन से cassettes हैं जो मैंने संभाल के रखे हैं, और वो संभाल के कहाँ रखें वो एक अलग क्वेश्चन है. लेकिन हाँ, बाकी सारे मैंने यार I have discarded them and I'm feeling so bad about it now, seriously. So ये जो पुरानी ऑडियो टेप जिन्हें हम अपने बचपन में यू नो पेंसिल से ठीक किया करते थे when they were stuck, उनकी डिमांड फिर एक बार आ गई है. और ग्लोबल डेटा शोज दैट कैसेट ऑडियो कैसेट्स सेल्स हैव एक्सप्लोडेड बाय ओवर 200% रिसेंटली. कैन यू बिलीव दैट? और सबसे हैरानी की बात ये है कि ये पुराने ट्रेंड को कोई पुराने लोग नहीं लेकर आ रहे हैं, जेन जी लेकर आ रही है, और ये कमाल की बात है. पॉप सुपरस्टार्स लाइक ओलिविया रोड्रिगो एंड सबरीना कार्पेंटर आर सेलिंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज ऑन कैसेट्स अपेरेंटली. स्ट्रीमिंग बहुत डिस्पोजेबल लगती है, और यहाँ पे ऑडियो कैसेट्स आपको म्यूजिक के साथ साथ एक टेंजिबल वो फील देता है, रियल कनेक्शन देता है, एंड दैट इज an amazing thing, you know, just sitting in your living room and listening the way we used to listen to. So ye audio cassettes definitely are coming back. If you are having them, shukar manaiye ki mere tarah aapne unko dispose nahi kar diya.

0: Well, gone are the days when you didn't know what to do, क्योंकि भाई professionals आपके लिए यहाँ हाजिर है. If you are seeking the path through US permanent residency, and if you are on H1B, F1, L1 or any other non-immigrant visa, law offices of Seema Mehta can definitely help you. Attorney Seema Mehta and her experienced team ये ना specialize करते हैं immigration law में, including EB5 investor visas, family and employment visas, perm labor certification and US citizenship. तो इनके साथ जरूर कनेक्ट करें ईमेल पे info@seemamehtalawfirm.com. डू रिमेम्बर दैट. कीप लिसनिंग.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल्ड वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Hey, तुमने कभी insurance लिया?
5: लिया.
4: कभी policy समझ भी आया?
5: नहीं आया.
4: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमैरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमैरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
6: Visit www.sanadainc.com today.
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
8: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो.
10: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
14: वेट, इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
15: मैं.
16: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल. कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897. Or visit astrologerishwar.com.
6: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
3: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
1: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
17: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
1: सच में? सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
18: Tracks that put you on the right track.

कोई पहेली नहीं जी, सीधे सीधे बताने वाली हूँ कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स जो हैं, जो प्रेस्टन रोड पे हैं इन फ्रिस्को, ये आपका डेस्टिनेशन होना चाहिए फॉर द डायमंड ज्वेलरी कलेक्शन दैट दे हैव. इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग, वन कैन वाउच फॉर इट. जो गए हैं वो जानते हैं, वो जो नहीं गए हैं उनको जाके देखना चाहिए. द ब्यूटिफुल कलेक्शन ऑफ रिंग्स, इयर रिंग्स एंड डार्जलिंग नेकलेसेस, ऑल दैट इज कॉन्टेम्प्रेरी एंड ट्रेडिशनल दैट यू विल फाइंड. सब कुछ मिलता है आपको इनके पास, फॉर एंगेजमेंट्स, फॉर एनिवर्सरीज, फॉर एनी सेलिब्रेशन दैट यू हैव. या तो अगर सिंपली अगर आपको जाना है और अपने आप को ट्रीट देना है तो वाई नॉट यार. वो कहते हैं ना कि ऑक्सीजन मास्क खुद को यूज करना पड़ता है बिफोर यू लेंड इट टू एनीबडी एल्स ऑन एन एयरप्लेन. तो बस ऐसा ही है कि खुद को अच्छा फील कराओगे ना तो अपने आस पास के लोगों को भी. एंड इफ यू कैन अफोर्ड टू रियली गो एंड फील गुड एट मालाबार, वाई नॉट लेडीज एंड जेंटलमैन. एक्सपीरियंस अनमैच्ड, जो क्राफ्ट्समैनशिप ये जो लेकर आते हैं, जो ब्रिलियंस होता है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की ज्वेलरी का, इट इज अनपैरेलल. दिल को ना खुशी मिलेगी आपको, जरूर जाएं. इट इज इन फ्रिस्को लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स. जरूर याद रखें. और याद कीजिए वो दिन जब हम ऑडियो कैसेट सुना करते थे. थोड़ी देर पहले मैं यही बात करी थी ना, वो चीजें जो वापस आ रही हैं, एंड थैंक्स टू जेंसी फॉर ब्रिंगिंग देम बैक. वाइनल रिकॉर्ड से लेकर यू नो ऑडियो कैसेट्स तक, सारी ये चीजें वापस आ रही हैं. और ये सुन के जितना जितनी खुशी मिली उतना दुख भी मिला, क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी ना कि ए बिग बॉक्स ऑफ ऑडियो कैसेट्स दैट आई हैव डिस्पोज्ड ऑलरेडी, आज वो होता तो क्या होता, मैं वही सोच रही हूँ. लेकिन आप भी यही सोच रहे होंगे कि कैसेट्स अगर वापस आ रही हैं तो भाई प्ले कैसे किया जाएगा उनको, राइट? तो सुन लीजिए, प्रीमियम ऑडियो ब्रांड्स अब क्लासिक वॉकमैन और बूम बॉक्सेस के मॉडर्न वर्जन्स मार्केट में लेकर आ रहे हैं. इन टुडेज हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड वेयर फोन नोटिफिकेशंस नेवर स्टॉप, राइट, ये जनरेशन बस वही तो कोशिश कर रही है कि एक डिस्ट्रैक्शन फ्री म्यूजिक एक्सपीरियंस मिले. क्या बात है यार, सीरियसली, बस एक टेप अंदर डालो और वो फिजिकल एक प्ले बटन पुश करो एंड फील द वाइब, जस्ट वाइब विद द म्यूजिक. ये जो फीलिंग है ना, ये हम समझ सकते हैं जो उस एरा को बिलोंग करते हैं जब हमने ऑडियो कैसेट्स बहुत प्ले की हैं. वो एक फीलिंग अलग होती है. नो ग्लोइंग स्क्रीन्स, नो एल्गोरिथम टेलिंग यू व्हाट टू लिसन टू नेक्स्ट. इट्स ऑल अबाउट इंटेंशनल लिसनिंग. आपको पता है कि आप क्या सुनना चाहते हो, आप क्या सुनना चाहोगे बिना किसी डिजिटल नॉइज के. दैट्स व्हाट यू गेट विथ ऑल दीज वेज ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, एंड दैट बींग ऑडियो कैसेट इन वॉकमैन एंड बूम बॉक्सेस. वेल, वॉकमैन भी मैं, पता नहीं मेरा कहाँ है यार, आई डोंट रिमेम्बर थ्रोइंग इट अवे, बट आई हैड दिस सोनी वॉकमैन एंड दिस वॉज बैक इन 1999 आई थिंक आई गॉट दिस वन, एंड आई एम सो बैडली मिसिंग इट. सीरियसली, आप लोगों से बात करते करते ना ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं मुझे. एंड वो जो एक फीलिंग होती थी ना कि वॉकमैन को डाला अपने जीन्स में, यू नो हुकअप किया और यू नो योर हेडफोन्स, एंड वो जो सुनते सुनते जाना, वो एक अपने आप में कमाल की बात होती थी. एंड इट वॉज सच अ न्यू थिंग देन, एक बड़ा हाइप था उसका, और वो हाइप कब गायब हुआ पता भी नहीं चला, सीरियसली. एंड येस, थिंग्स दैट आर कमिंग बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि ये गाना ले लीजिए. और इसमें जब वो एक वो रेट्रो फील है, क्योंकि रेट्रो गाना गाने का ही समझ ले रीमेक है ये, फ्रॉम बॉम्बे वेलवेट, प्लेइंग एवरीथिंग दैट इज मॉडर्न बट हैज दैट रेट्रो फ्लेयर टू इट.

All right, from Bombay, Velvet, that song was an amazing, amazing song. That it is from a retro film, retro गाने को एक नए अंदाज में पेश किया था. एंड दैट इज वॉट वी आर डूइंग हियर. कुछ ऐसी चीजें जो वापस आ रही हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. तो हमने वाइनल रैकेट्स के बारे में बात की, हमने ऑडियो कैसेट्स के बारे में बात की, हमने वॉकमैन और बूम बॉक्सेस के बारे में बात की. एंड दिस इज अ स्मॉल रीकैप दैट आई एम गिविंग टू द पीपल हु आर जस्ट ट्यूनिंग इन इनटू गपशप गली विद मी टू. तो अगली एक और चीज जो वापस आ रहा है वो है, लेट्स टेल यू अबाउट दैट स्मार्टफोन ऑल्टरनेटिव, द फ्लिप फोन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो स्मार्टफोन का ऑपोजिट क्या होता है? डम्ब फोन. एंड देयरफॉर द नेम कम्स फ्रॉम दैट आई बिलीव. जी हाँ, डम्ब फोन्स वो जो फीचर फोन्स के नाम से भी जाने जाते हैं. और डम्ब फोन्स आर स्ट्रिप डाउन मोबाइल डिवाइसेस दैट प्रायोरिटाइज कोर कम्युनिकेशन, यानी कि कॉल करने के लिए और टेक्स्ट करने के लिए, और इंटरनेट ब्राउजिंग और सोशल मीडिया एप्स, ऐसा कुछ ज्यादा आपको मिलेगा नहीं है उन पे. कीपैड्स जो होंगे नॉन टच डिस्प्लेस होंगे, और बैटरीज जो कि दो दिन से एक हफ्ते तक चलें, ऐसी बैटरीज इनकी होती हैं. बिकॉज इट इज स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल द अदर यू नो फ्रिल्स ऑन द फोन दैट स्मार्टफोन्स हैव, राइट. लोग अपने एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स को साइड में रख के पुराने मोटोरोला या नोकिया के बेसिक फोन्स परचेजेस कर रहे हैं, ताकि एंडलेस स्क्रोलिंग और स्क्रीन एडिक्शन से बच सकें. कैन यू बिलीव दैट वी आर गोइंग बैक ऑन द राउट दैट वी केम फ्रॉम? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगने लगी है लोगों को, कि अति हो जा रही है हर चीज़ की, और उस अति से ही बचने के लिए ये सारी चीज़ें, यू नो, टैपिंग फिजिकल बटन्स टू टेक्स्ट एंड फिजिकली फ्लिपिंग द फोन शट विद अ स्मैट टू कट अ कॉल, इट इज डीपली सैटिस्फाइंग. अगर आप उस फील को जानते हैं तो आप जानते हैं. इस मॉडर्न दुनिया में ना, जहाँ हर कोई हर वक्त ऑनलाइन है, थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट होना ही सबसे बड़ा लग्जरी फ्लेक्स बन चुका है, डोंट यू थिंक सो? और ऐसे में ये सारी चीज़ें वापस इसीलिए आ रही हैं क्योंकि देर इज़ टू मच ऑफ नॉइस अराउंड बिकॉज ऑफ द वेरियस थिंग्स दैट वी सो ईजीली गेट ऑन आवर फोन्स. टॉकिंग अबाउट वो विच स्मार्टफोन्स का एक फीचर जो कि लोग अब नहीं यूज करना चाहते हैं, दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट आफ्टर यू लिसन टू दिस नेक्स्ट ट्रैक. और आप लोगों के लिए गिव अवे है यहाँ पर, और ये गिव अवे एक बहुत ही शानदार गिव अवे है. लेडीज एंड जेंटलमैन, मथांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप आपके लिए लेकर आ रहे हैं इंडिया के माइकल जैक्सन प्रभु देवा को लाइव इन डैलस फोर्ट वर्थ. जॉइनिंग हिम आर लॉरेन गॉटलिब एंड सोनल भादुरिया एंड एलेक्जेंडर नोएल, और साथ में हरिनी नीलाकांतन एंड नताशा शेरपा के साथ साथ सानवे मेघना फॉर दिट अल्टीमेट पैन इंडिया डांस कॉन्सर्ट. और ये 1 अगस्त को होने वाला है एट द टेक्सस ट्रस्ट CU थिएटर इन ग्रैंड प्रेरी. यू कैन इमेजिन हाउ बिग दैट इज गोइंग टू बी, राइट. तो अगर आप प्रभु देवा के इस इवेंट को लाइव देखना चाहते हैं तो फिर आपको टिकट्स बुक करनी पड़ेंगी, और अगर आप टिकट्स बुक करना चाहते हैं तो आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है. 248-233-3828 एंड मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. डू रिमेंबर दैट लेडीज एंड जेंटलमैन. गिव अवे है ये गाना आपके लिए, प्रभु देवा एंड माधुरी दीक्षित, और ये गिव अवे सबके लिए है. बाकी टिकट्स जाके खरीदिए.

कि नॉस्टैल्जिया का ही असर है कि कुछ चीजें वापस आ रही हैं. दैट इज राइट. इस सेगमेंट में और पिछले सेगमेंट में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करें जो जेंजी के कारण वापस आ रही है. कुछ ऐसी चीजें जो मुझे नहीं लगा था कि कभी वापस आएंगी. फॉर एग्जाम्पल वाइनल रिकॉर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल ऑडियो कैसेट्स, फॉर एग्जाम्पल वॉकमैन एंड बूम बॉक्सेस, एंड ऑल्सो गेस वॉट द वन थिंग दैट इज रिटर्निंग फॉर श्योर. इट इज you know the unsmart phones या dumb phones या feature phones जो भी कहना चाहें वो भी वापस आ रही हैं. और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन में ना जो हमारे कैमरा होते हैं वो जा रहा है. जी हाँ, आजकल हर किसी के पॉकेट में एक सुपर हाई एंड 4K स्मार्टफोन कैमरा होता है, राइट? पर सच बताएं तो ये फोटोज़ अब सच में ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट हो गई हैं. यू नो, स्मार्टफोन इमेजेस हैव बिकम हैवीली प्रोसेस्ड, AI करेक्टेड, और वो सारी फिल्टर्स और वो उसके कारण ना आर्टिफिशियल लगता है. यू नो, इसी वजह से जेंजी जो है अब पार्टीज और अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप्स पर 2000s के चंकी डिजिटल कैमराज या पोलरॉइड्स लेकर जाते हैं. द फ्लैश इज हार्श, द रेजोल्यूशन इज लो, द आई ग्लो रेड, आईज ग्लो जो होते हैं ना, वो जो वो रेड भी आ जाती है कई बार आंखें, बट द वाइब्स आर 100% ऑथेंटिक, एंड दैट इज वॉट दे आर क्रेविंग फॉर, एंड दैट इज वॉट दे आर इंजॉइंग, एंड देयरफॉर दे आर ब्रिंगिंग बैक ऑल दीज थिंग्स. एक हाई एंड फोन से खराब फोटोग्राफ लेना बहुत मुश्किल है, और लोग अब भी उस ऑथेंटिक परफेक्शन की तलाश में है, वो जो कि ऑथेंटिक नहीं है, परफेक्शन ज़रूर है. लेकिन यहाँ पे जेंजी जो कर रही है, दैट इज ऑथेंटिक इम्परफेक्शन ढूंढने की कोशिश. नो फिल्टर्स, नो एडिट्स, जस्ट रॉ मेमोरीज. नाउ हाउ कूल इज दैट, इज़न्ट इट? एज कूल एज दिस सॉन्ग बिकेम व्हेन इट रिलीज्ड, विच हैज दैट हेलन फ्लेवर टू इट.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Jeet unki hoti hai, jinki nazar sirf target par hoti hai. Chahe Olympic style archery ho ya 10 meters indoor precision shooting. Focus, discipline, consistency. Frisco Precision Sports Academy, one and only in North Dallas. From beginner to competitive athletes, structured coaching, expert guidance, and performance-driven training, ages 8 and above.
8: Frisco Precision Sports Academy, powered by Arjun Archery Academy, conveniently located on Quiet Road in Frisco. Visit friscoprecisionsports.com or call 469-333-1099.
7: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
9: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
10: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
9: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
10: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
9: और एंटरटेनमेंट,
10: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
9: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
10: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
11: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
12: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
13: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
14: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
15: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
14: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
15: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
12: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support, aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia, get $100 off your first month.
16: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
17: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
18: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
19: This is Uday Chopra, and you are listening to Fun Asia Radio.
20: Tracks that put you on the right track.

दारू के साथ तंदूरी कैसा लगता है? दैट्स एन अल्टीमेट कॉम्बिनेशन. लेकिन अगर आप दारू नहीं भी पीते हो भाई, तंदूरी तो हर वक्त, इट्स ऑलवेज अ वेलकम वेलकम थिंग, राइट? और अगर तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट का नाम हो, विच इज इन गार्लिन, यू ऑल आर अवेयर ऑफ, तो यहाँ पे ना सिर्फ आपको वो तंदूरी कबाब्स एंड ऑल ऑफ दैट यू गेट दैट स्पेशल प्लेटर एंड दोज रिच करीज दैट यू कैन एन्जॉय, ऑल दोज नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स दैट यू हैव, वो होम स्टाइल पंच के साथ जो सर्व होता है, मजा आ जाएगा. और फिर तो हाँ, वो कबाब्स तो हैं ही, स्मोकी तंदूरी कबाब्स और बहुत कुछ और है. अगर मैं यहाँ पे बोलने लगी ना तो मैं यहीं अटक जाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे मुझे जो जो है अपने फ्रेंड के साथ, आई एम गोइंग आउट एंड यू नो व्हाट, दिस कैन बी अ ग्रेट वेन्यू टू गो, लेकिन हमारा कुछ और डिसाइडेड है, तो ये एक और दिन के लिए तय रहा. लेकिन ये तो डिसाइडेड है कि भाई ये जगह आप जब जाते हो ना तो मजा आ जाता है आपको. तंदूरी फ्लेम, दे सर्व यू द काइंड ऑफ मील दैट टर्न्स एन ऑर्डिनरी डे इन टू फीस्ट फॉर श्योर. तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट गार्लिन में है, भूलिएगा नहीं. अगर आस पास हैं और लंच कुछ चॉइसेस के बारे में सोच रहे हैं, दिस इज आर सजेस्टन टू यू. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. दिस इज गपशप गली विथ मी टू, एंड दिस लास्ट सेगमेंट एंड लास्ट फ्यू डेज फीफा कवरेज इन दिस लास्ट सेगमेंट ऑफ माइंड. तो कहाँ से शुरू करें? आज क्योंकि कोई गेम नहीं है, कल भी कोई गेम नहीं है, सीधे आप सैटरडे को ब्रॉन्ज फाइनल होने वाला है और संडे को देन द ग्रैंड फिनाले दैट वी हैव. सो येस, आई हैव जस्ट टुडे एंड टुमारो टू कवर. उसके बाद कवरेज जो है आप लोगों से ही मिलने वाली है मुझे. बट येस लेडीज एंड जेंटलमैन, द 2026 फीफा वर्ल्ड कप ब्रॉट द एंटायर ग्लोब टू नॉर्थ टेक्सस. लेकिन हर ग्रैंड फिएस्टा का एक एंड होता ही है, करेक्ट? द टूर्नामेंट हैज ऑफिशियली रैप्ड अप इट्स matches in Dallas and the venue is wasting absolutely no time getting back to its roots. Just one day after that epic semi-final clash where we saw Spain against France, aur ye jo battle jo hua tha wo Tuesday ko hua tha, well the Dallas Stadium World Club disguise started coming off right after that yesterday. Wo jo 30 din ka FIFA makeover tha na, it's officially being packed up. Crews were spotted early in the morning yesterday removing the heavy tarps from the roof that covered the iconic AT&T logos. अब वापस उस डैलस स्टेडियम का जो वो नाम था वो वापस उससे हटके AT&T के लोगों पे जाने वाला है. पहले रूफ क्लियर किया गया एंड नाउ द ईस्ट एंड वेस्ट विंडो कवरिंग्स आर कमिंग डाउन. सारे वाइब्रेंट फीफा बैनर्स और वर्ल्ड क्लास साइनेज हटाए जा रहे हैं, मेकिंग वे फॉर द सिल्वर एंड ब्लू. लेडीज एंड जेंटलमैन, अब स्टेडियम के अंदर सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बाकी है, रिमूविंग द पिच. The beautiful live grass field that was so carefully installed and maintained for 9 World Cup matches is being taken out. While FIFA is actually selling pieces of the grass pitch from the New York, New Jersey stadium, which will have the finals on the 19th, $450 पे एक एक सेगमेंट बेचा जा रहा है, दैट ग्रास पिच आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ दैट स्टेडियम. डैलस टर्फ का क्या होगा ये अभी तक तो पता नहीं चला, ये क्लियर नहीं है. वाइड स्प्रेड स्पेकुलेशन हैज़ कि इट माइट जस्ट बी डोनेटेड टू ए लोकल ऑर्गेनाइजेशन इन टेक्सस. पर एक बात जो पक्की है वो ये है कि डैलस ने फैंस का दिल जीत लिया, इसमें कोई शक नहीं है. फ्रॉम द अनफॉरगेटेबल टेक्सस हॉस्पिटैलिटी एंड इनक्रेडिबल लोकल फूड टू द शेयर ऑ ऑफ द स्टेडियम इटसेल्फ, फैंस ग्लोबली हैव फॉलन इन लव विथ आर्लिंगटन, व्हाट आर्लिंगटन हैड टू ऑफर. एंड सीरियसली, सोशल मीडिया फ्लडेड है ऐसी रील से, फैंस की बातों से, वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट डैलस सो ब्यूटिफुली कि बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं ये देखती हूँ. जब घर का कोई इवेंट या सेलिब्रेशन बहुत अच्छा जाता है ना, एंड वो फील कैसा होता है आपका, बस वैसा ही फील हो रहा है. नहीं, थैंक्स टू एवरी इंडिविजुअल जो यू नो बिहाइंड द सीन, जिन्होंने टायरलेसली काम किया, उन सभी को कहना चाहती हूँ वेल डन यू ऑल. क्या काम किया है आप लोगों ने. एंड दिस ब्यूटिफुल गेम हैज़ मूव्ड ऑन टू द फाइनल्स नाउ. द ब्रॉन्ज फाइनल्स हैपनिंग on Saturday and the final on Sunday, and the stadium is reclaiming its true identity. The countdown for the Dallas Cowboys season is officially on.

Well, nothing was shyrana about yesterday's game, jo ki tha between England and Argentina, the second semi-final that happened, ladies and gentlemen. And the avalanche arrived in 7 minutes. 85th minute pe Fernandes ne jo unleash kiya apna thunderbolt from outside the box was just amazing, mind-blowing. Aur wahan pe 90th minute pe jo second goal hua Argentina ka, and that was by Martinez, that rose high to head home the winner. And that is what exactly happened when England built that castle and they shredded to bits, most literally. And football can be really, really cruel. Matlab, aap ye sochein ki 85th minute tak, England were writing a fairy tale, correct? Aur phir Argentina ne wo pen uthaya aur itihas bana diya. They rewrote the ending for this match. And how, ladies and gentlemen? So, ab final hone wala hai between Spain and Argentina, as we all know, on the 19th. Aur bronze final ye jo hone wala hai, ye France aur England ke beech mein Saturday ko hone wala hai on the 18th. Aur semi final onwards, ek jo naya addition hua hai, wo hai ball ka. Yani ki the two semi final matches, if you haven't checked it out already, you should probably, for the bronze final and the final. The new addition to the tournament is this ball. Is बॉल का नाम क्या है? अगर आप मुझे ये रिप्लाई देते हैं तो रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से ड्राई चिली चिकन या चिली बेबी कॉर्न होगा आपका, क्योंकि फीफा फीवर जो है बस कल आखिरी दिन है एंड द कवरेज एंड्स. तो आई हैड टू रियली आस्क अ फीफा क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, राइट? तो बताइए इस बॉल का नाम क्या है फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026. वॉट इज द नेम ऑफ द बॉल? बिकॉज एवरी फीफा टूर्नामेंट हैज ए नेम गिवन टू द बॉल. तो इस साल का क्या है वो नाम, ये मुझे बताना है आपको. रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से ये आपको मिल सकता है. एंड डू रिमेंबर, लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉल कीजिए और हमें बताइए 9722355555.

0: ऑनेस्टली ये फीफा की दीवानगी है दैट लेड मी टू स्टार्टिंग दिस सेगमेंट, दिस लास्ट सेगमेंट इंटायरली डेडिकेटेड टू फीफा, लेडीज एंड जेंटलमैन. और इसीलिए आज ये सवाल पूछना जरूरी बन गया था, क्योंकि समथिंग दैट हैज बीन एडेड सिंस द सेमीफाइनल्स, आई थॉट आई मस्ट रियली आस्क यू ऑल कि बॉल का नाम क्या है यार. ये जो फीफा टूर्नामेंट में इस साल जो बॉल यूज किया जा रहा है उसका एक नाम है, हर टूर्नामेंट में इनके एक नाम होता है बॉल का, और इस बार के बॉल का नाम है ट्रायन. Yes, and that's the right answer that I got from Moushami. And guess what? Moushami has the last name as the film actress, Moushami Chatterjee. कहीं आप वही तो नहीं हो? ये तो मैं पूछना ही भूल गई. लेकिन seriously, jokes apart, yes, Moushami, you totally have deserved it from Red Hot Chili Pepper, Dry Chili Chicken या फिर Chili Baby Corn हुआ completely आपका. जरूर जाइए Red Hot Chili Pepper, जहाँ का खाना ना best होता है. And from the bottom of my heart, really, जब भी गई हो ना, बड़ी तृप्त आत्मा बन के निकली हूँ वहाँ से. So yes, go and enjoy the food there, Moushami, and everybody else who are seeking for the right place to go, maybe suggest Red Hot Chili Pepper to you. Once again, thank you very much for tuning in. और हर टूर्नामेंट का जो है ना एक क्लाइमैक्स होता है, और फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेज जो है वो सेट हो चुका है. एंड देर हैड टू बी ए बॉल दैट वुड डिफाइन इट इन द मोस्ट परफेक्ट वे. द ट्रायोंडा फाइनल इज द ऑफिशियल मैच बॉल विच हैज बीन एक्सक्लूसिवली डिजाइंड फॉर द लास्ट फोर मैचेस ऑफ द 2026 फीफा फुटबॉल कप, the semi-finals, the bronze final, the ultimate championship game. Trayonda jo ye ball ka naam hai, ye throughout the tournament raha hai, lekin Trayonda final is the name of the ball that they have given to this very special creation for the last four matches. Agar aapne semi-finals mein ye dhyan nahi diya ho na ispe, to make sure you do it for the Saturday's bronze final and Sunday's grand finale, alright? Just like the standard Trayonda ball that has been used up until the semi-finals, it is constructed from just four thermally bonded polyurethane panels, and the ball that ensures unparalleled flight stability and aerodynamic control on the pitch. इसके अंदर की जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी एडवांस है, जिसमें एक साइड माउंटेड है मोशन सेंसर चिप का, जो यूज़ किया गया है वो हर मूवमेंट को ट्रैक करता है. एंड दिस कनेक्टेड बॉल टेक्नोलॉजी इंस्टेंटली यू नो ट्रांसमिट्स रियल टाइम डेटा, प्रोवाइडिंग द मच नीडेड वीडियो असिस्टेंट रेफरी VAR विथ हाईली एक्यूरेट एनालिटिक्स टू हेल्प मैच द ऑफिशियल्स find out about crucial decisions and make those decisions, so to say. So what's different about the Trayonda final ball, if you ask me? Well, standard Trayonda ki jo technology par jo bani hai, is ball ka naya premium design is what is the show stealer. गोल्ड, ब्लैक और वाइट कलर्स में है, जो कि आइकॉनिक वर्ल्ड कप ट्रॉफी को ट्रिब्यूट देता है. ए यूनिक न्यू फीचर ऑफ द बॉल इज दैट इट इंट्रिकेटली इनकॉर्पोरेट्स द नेम्स ऑफ ऑल 16 होस्ट सिटीज डायरेक्टली इनटू द ग्राफिक्स. द होस्ट सिटीज ऑफ सेमीफाइनल्स, ब्रॉन्ज फाइनल एंड द टूर्नामेंट फिनाले, दैट इज डैलस, एटलांटा, मायमी एंड न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी का नाम डिजाइन के.
1: तारा वो तारा हर तारा. अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
2: हेलो, Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
1: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
3: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
4: Excuse me. It's called being loyal.
3: It's called being predictable.
4: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
3: And what's so special at Neon Cactus?
4: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
3: Not bad.
4: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
3: Okay, this I didn't expect from you.
4: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
5: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
6: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
4: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
7: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
4: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
7: Papri chaat se malpua rabri tak. Har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
8: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
9: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
8: नहीं।
9: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
8: नहीं।
9: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
8: वो भी नहीं।
9: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
10: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। For your tax planning, bookkeeping and CFO services, visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
1: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
11: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

A very good afternoon, my desi people. आप सुन रहे हैं Fun Asia Radio 104.9 FM और मैं हूँ आरजे सिमी और ये शो है Afternoon Adda. आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस का बर्थडे जिनकी स्माइल मिलियन डॉलर है, डांस मूव्स आइकॉनिक है और स्क्रीन प्रेजेंस तो कमाल की है. मतलब बात करें तो ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑरा कमाल का है. A very happy birthday to the gorgeous Katrina Kaif. Katrina की जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही है. हिंदी लैंग्वेज से स्ट्रगल करने से लेके बॉलीवुड की बिगेस्ट स्टार्स में शामिल होने तक का सफर उन्होंने अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी से तय किया है. तो आज के शो में हम उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे और उनके ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स के बारे में भी. एंड नॉट टू फॉरगेट एंड लेट्स बिगिन विद कमली.

आज हम कैटरीना कैफ का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 43 इयर्स की हो गई हैं वो, और उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहती हूँ कि कैटरीना ने मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की थी। डांस नंबर्स के लिए उनकी जो रिहर्सल और डिसिप्लिन है वो इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर है। उनकी ऑन स्क्रीन पेयरिंग अक्षय कुमार के साथ फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। सलमान खान, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, आमिर खान और रणबीर कपूर के साथ भी उन्होंने कई मेमोरेबल फिल्म्स दी है, और आज भी उनका फिटनेस रूटीन और डेडिकेशन काफी लोगों को इंस्पायर करती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से कैटरीना की बेस्ट मूवी कौन सी है, आपको उनकी कौन सी मूवी पसंद है, तो लेट मी नो एट 9722355555।

टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग कैटरीना कैफ्स बर्थडे और बहुत सारे लिसनर्स के कॉल आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उनकी फेवरेट मूवी कौन सी है कैटरीना कैफ की। सागर का कॉल आया और उन्हें उनकी न्यूयॉर्क मूवी काफी पसंद है, टाइगर मूवी भी काफी पसंद है और मेरा पर्सनल फेवरेट भी न्यूयॉर्क ही है। सो आई एम गोना प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी न्यूयॉर्क और इसके बाद हम अनिल जी की रिक्वेस्ट पे जब तक है जा का सॉन्ग प्ले करेंगे, विच इज सांस में तेरी सांस आए।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
1: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
2: Calculating route. Rerouting.
1: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
2: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
1: क्यों?
2: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
1: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
3: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
2: Your new destination has arrived.
4: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
1: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
5: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
7: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
8: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
7: सच में सब संभाल लेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

You are listening to Financial Radio 104.9 FM और आज हम सेलिब्रेट कर रहे थे कैटरीना कैफ का बर्थडे. वंस अगेन वी विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे. और अब वक्त हो गया है इस सेगमेंट को क्लोज करने का और आगे बढ़ने का. आगे मैं आपसे पूछने वाली हूँ गिव अवे राउंड का क्वेश्चन, तो कहीं जाइएगा मत. स्टे ट्यून्ड.

मैं कुछ लेने नहीं बल्कि आप लोगों के लिए कुछ देने के लिए आई हूँ जी। यहाँ फ्लेवर लाउंज की तरफ से दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी जीतने का मौका देने आई हूँ मैं आपको। हमारा गिव अवे राउंड शुरू हो गया है और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आपको उसका जवाब देना है, और अगर आप बनते हैं आज के लकी विनर तो आपको मिलेगा फ्लेवर लाउंज की तरफ से एक्साइटिंग एक्साइटिंग फ्री में खाने का मौका। तो तैयार हो जाइए, बस आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये गिव अवे ऑलरेडी फन एशिया के किसी भी और शो में जीत लिया है लास्ट वन मंथ में तो प्लीज डू नॉट पार्टिसिपेट। हम बाकी लोगों को भी फ्लेवर लाउंज का खाना खाने का मौका देना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन ये है कि आज हम कैटरीना कैफ की बातें कर रहे हैं, उनका बर्थडे है तो सवाल भी उनके आसपास ही होगा। आपको बताना है कि उन्होंने जो एक ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसके ब्रांड का नाम क्या है, उनकी ब्यूटी ब्रांड का नाम बताना है आपको बाय कॉलिंग मी एट 972-235-5555।

हमारा गिव अवे राउंड खत्म हो गया है और काफी इंटरेस्टिंग रहा। मुझे लगा कि बहुत सारी लड़कियों के कॉल आएंगे बताने के लिए कि इट्स द आंसर इज के ब्यूटी। हमने आपसे पूछा था कि कैटरीना कैफ जो है किस ब्रांड की को फाउंडर हैं और वो एक ब्यूटी ब्रांड है एंड दैट इज के ब्यूटी। और बहुत सारे जो है लोगों ने एंड द मेल लोगों ने बहुत सारे जवाब दिया है। आई एम वेरी वेरी इंप्रेस। और उनका कहना है कि भाई गिफ्ट खरीदने वक्त तो ये सब रिसर्च करना पड़ता है ना। सही बात है। आज के हमारे विनर है राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको मिलता है फ्लेवर लाउंज की तरफ से फ्री दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी खाने का मौका। ये लोकेटेड है एट प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को और आप जरूर जाएं यहाँ का खाने का लुत्फ उठाएं। बाकी लोगों के लिए मैं कैटरीना कैफ के गानों का लुत्फ उठाने का मौका देती हूँ।

0: फोन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
3: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
3: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
7: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
3: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
7: Call now 945-527-0897 or visit astrologer Ishwar.com.
8: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
3: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
13: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
14: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

आ गई भाई, आप कब से मुझे बुला रहे थे कि आ जा रहे, तो ये लो आरजे सिमी आ गई है और अभी मेरा और आपका साथ एक घंटे तक और बने रहने वाला है। शो है आफ्टरनून अड्डा एंड यू हैव ट्यून्ड इनटू फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम। अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। क्या आपको पता है कि नींद का यानी कि स्लीप का आपकी लाइफ में और आपकी बॉडी को में जो है कितना इंपॉर्टेंस है, कितनी जरूरत है आपकी बॉडी को नींद की? जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी रिपेयर करती है उसके टिश्यूज जो कि डैमेज हो जाते हैं, या फिर आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करती है और आपके मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना क्वालिटी स्लीप जो है ज़रूर ले और उसको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाएं अपने ओवरऑल हेल्थ का। हम जिम वगैरह तो जाते रहते हैं लेकिन स्लीप की बातें बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड दिस वॉज हेल्थ टिप ऑफ द डे फ्रॉम पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर फॉर यू गाइज।

0: Sawyer, I love you.
1: इस सॉन्ग में एक सेंटेंस था इसके लिरिक्स में कि खुशी खुशी पहना तेरा दिया गहना, लेकिन ये गहना खरीदे का है भाई, लाए कहाँ से? तो मैं आपको बताती हूँ कि आप श्री कृष्णा ज्वेलर्स पे जरूर जाएं, वहां आपको मस्त बहुत सारे अमेजिंग स्टाइल्स और डिजाइन मिल जाएंगे, फ्रॉम गोल्ड डिजाइन से लेके स्पार्कलिंग डायमंड्स तक। यहाँ पे कुंदन भी मिलेगा और स्टनिंग पोलकी कलेक्शन भी रखते हैं वो, और हर एक पीस को क्राफ्ट किया गया है आपके स्पेशल मोमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको और स्पेशल बनाने के लिए। और मानते हैं, मतलब श्री कृष्णा ज्वेलर्स जो है वो मानते हैं कि ज्वेलरी ना सिर्फ एक एसेसरी नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है आपके ट्रेडिशन का, आपके एलिगेंस का और आपके टाइमलेस ब्यूटी का। और अब तो अब उनकी एक और लोकेशन भी आ गई है भाई, आप वहां पे भी जा सकते हैं अगर वो आपके पास बढ़ता है। इट्स लोकेटेड एट 13145 सूट 220 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को में, और श्री कृष्णा ज्वेलर्स में आपकी मेमोरीज को भी चेरिश किया जाता है विद क्राफ्ट फाइन ज्वेलरी।

क्या आपको पता है कि इंडिया का माइकल जैक्सन किसको बोलते हैं और किसको? प्रभु देवा को। ये तो आपको पता ही होगा, बट क्या आपको पता है कि वो डैलस आ रहे हैं? नहीं पता तो अब बता दिया ना मैंने। वो सैटरडे को आ रहे हैं, अगस्त 1 को, एट टेक्सास ट्रस्ट सीयू थिएटर इन ग्रैंड प्रेरी। और दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय मलांथी एंटरटेनमेंट ग्रुप। और वो अकेले नहीं आ रहे, ओके? उनमें बहुत सारे ABCD जो मूवी थी उसके क्रू मेंबर्स भी आ रहे हैं, उनके एक्टर्स भी आ रहे हैं, लाइक लॉरेन गॉटलिब और सोनल भदौरिया आ रही हैं, अलेक्जेंडर नॉयल भी आ रही है, हु इज़ लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोरियोग्राफर्स बीइंग फेमस ऑन इंस्टाग्राम रिसेंटली, हरिनी नीलाकंठन है, सताशा शेरपा है, सानवे मेघना, बहुत सारे ऐसे नाम है। मतलब वो कॉन्सर्ट कितना धमाकेदार होगा ये तो आपको जाके ही पता चलेगा। आपको अगर टिकट्स बुक करनी हो तो कॉल कीजिए 248-233-3828। आई रिपीट द नंबर फॉर यू, इट्स 248-233-3828। एंड इतनी सारी बातें कर ली हमने प्रभु देवा की और उनका गाना ना सुने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये तो सफ़ी के लिए भी है।

देखिए कि सरा सरा प्यार का आसरा तो ठीक है, लेकिन रहने के लिए जो आसरा है उसका क्या करें। अगर आपको भी ऐसे सपने देख रहे हैं, आप भी अगर एक घर का, एक खूबसूरत घर हो आपका अपना हो, तो इस सपने को, इस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है, और इसमें आपकी मदद करेंगे ड्रीम होम मॉर्गेज। जी हाँ, 1998 से वो फैमिलीज को हेल्प करते आ रहे हैं अक्रॉस द 50 स्टेट्स इन US उनके घर के सपने को हकीकत में बदलने के लिए। उनका प्रोसेस काफी स्मूथ है, स्ट्रेस फ्री है, तो आपको ज्यादा तकलीफ बिल्कुल नहीं होने वाली, आपका एक्सपीरियंस जो है काफी अच्छा रहने वाला है। और अगर आपको एक होम लोन चाहिए जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग हो, आपकी जरूरतों के अकॉर्डिंग, आपके जो प्लान्स हैं, गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, तो भी ड्रीम होम मॉर्गेज आपको उसमें मदद करेंगे। उनकी टीम काफी एक्सपीरियंस है इन सब चीजों में, और आप अपना जो है घर का सपना पूरा करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉल कीजिए उन्हें एट 972-245-5626, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज ड्रीम होम मॉर्गेज .com।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest. Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: बेटा, 95% आए?
9: हाँ मम्मी।
8: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
10: मेरा?
8: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
10: वो
11: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
12: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco, offer valid till 19 July only.
13: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
14: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
15: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
16: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
11: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
16: वेट, इतना सब और प्राइस?
11: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
17: मैं ही तो हूं।
18: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
11: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
19: हाय, दिस इज रानी मुखर्जी, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो

0: आप सुन रहे हैं फनेशन रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी विद योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। स्टूडियो में वक्त हो गया है अभी 2:08 और वक्त हो गया है हमारे नेक्स्ट गिव अवे राउंड का। इस गिव अवे में आपको मिलेगा फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड, तो तैयार हो जाइए। लेकिन बस एक बात है जो मैं बता देना चाहती हूँ कि आपको तभी पार्टिसिपेट करना है अगर आपने ये गिव अवे लास्ट एक महीने में नहीं जीता है। ओके, सवाल ये है कि जो अगला गाना मैं बजाऊंगी आपको बताना है कि उस का मूवी का नाम क्या है। कॉल करना है आपको एट 9722355555।
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

हमें हमारे गिव अवे राउंड का विनर मिल चुका है या फिर कहे मिल चुकी है, क्योंकि वो है कामिनी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। और अगर बाकी लोगों के लिए भी एक न्यूज है कि अभी तक आप फन पिज्जा किचन नहीं गए हैं, वहां का पिज्जा इंजॉय नहीं किया है, तो जल्दी जाइए क्योंकि हर एक स्लाइस आपका इंतजार कर रही है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप ट्राई करें अचारी पनीर पिज्जा, या फिर अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो तंदूरी चिकन पिज्जा इज प्योर स्मोकी परफेक्शन फॉर यू। दिस इज अगेन लोकेटेड इन फ्रिस्को। और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप उनके वेबसाइट पे जाइए, विच इज funpizzakitchen.com।

अभी अभी आनंद पटेल जी का कॉल आया और बहुत अच्छा लगा उनसे बातें करके। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं और पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में बता देती हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर्स आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट नहीं, पूरे के पूरे आधे घंटे आपके साथ होते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं, कि क्योंकि उनको ऐसा मानना है कि जो हेल्थ है हमारी उसको और इम्पोर्टेंस देना चाहिए और टाइम देना चाहिए ताकि उसको अच्छे से समझ सके एंड देन डायग्नोसिस करना चाहिए। यहाँ पे आपको पेशेंट नहीं, एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं जैसे कि एनुअल फिजिकल चेकअप, एंग्जाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन अगर आपको अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स है, या फिर कोई विटामिन की डिफिशेंसी टेस्टिंग करानी हो जैसे B12 और दूसरे विटामिंस की, तो यहाँ सब कुछ अवेलेबल है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर पे। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो कॉल कीजिए @214666259।

0: अब वक्त हो गया है शो को एंड करने का. ये था आफ्टरनून अड्डा प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, जो कि है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म एंड द अकाउंटिंग फर्म इन यूएस. अगर आप इंडिविजुअल हो, कोई स्टार्टअप हो या फिर आपके पास कोई एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, एजी फिनटेक्स ऑफर्स यू इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जो कि टेलर किया गया है आपकी नीड, आपकी जरूरतों के अकॉर्डिंग. फ्रॉम बुक कीपिंग, पेरोल अकाउंटिंग एंड बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशन to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting and business advisory. ये सब सारी services AG Fintechs के पास available है, तो आप इनके पास जाएं और जो भी services आपको लेनी है उनको बताएं and एक stress free life enjoy करें. अगर आपके tax वगैरह कोई और file कर रहा है तो कितनी life, कितनी रातें बच जाती हैं अपना सर खपाने से. ये काफ़ी trusted हैं, efficient हैं and they are very committed कि आप जो है अपने पूरे tax planning में success पाएं, कम से जो भी returns हैं वो proper फाइल हो और आपको कोई भी स्ट्रेस ना हो. एजी फिनटेक्स आपका परफेक्ट पार्टनर बन सकता है इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल फ्यूचर्स. आप उनको अभी कॉल करें एट 4699429888 या फिर वेबसाइट पे जाएं, विच इज agfintechs.com.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
3: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust aur ab wahi trusted care urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa, sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care, open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
2: Documents या parcel भेजनी है?
5: हाँ.
2: घर relocate करनी है?
5: हाँ.
2: गाड़ी भी transport करना है?
5: हाँ भाई हाँ.
2: तो फिर tension क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को call कर.
6: Documents shipping, boxes shipping, complete door to door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide. हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
7: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
8: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
7: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर.
8: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
9: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
10: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
9: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
10: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
11: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
14: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
9: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
15: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
9: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
16: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
17: इन प्लेनो.
16: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
14: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
5: जीनी
17: हुकम मेरी आका।
5: हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
17: मिराज लाउंज चलिए मेरी आका। लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
5: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
17: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
5: और एंटरटेनमेंट,
17: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
5: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
17: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रैंच पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
18: हाय, आई एम राजकुमार राव एंड यू आर लिसनिंग टू द मोस्ट पॉपुलर एफएम स्टेशन इन द यूएस, 104.9 एफएम, फन एशिया रेडियो।

वेरी गुड आफ्टरनून टू द लिसनर्स ऑफ 104.9 एफएम फनीशियर रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. और रेडियो स्टेशन तो जी आपका फेवरेट है और शो है आफ्टरनून ड्राइव टाइम. हमेशा आपके साथ मंडे टू फ्राइडे कनेक्टेड रहती हूँ 2:30 से 5 तक. आई एम हेयर विद यू एंड यू आर हेयर विद मी एज वेल. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. कोई भी आपने बात करनी है, कोई गाना रिकमेंड करना है या एनीथिंग एल्स यू वांट टू डेडिकेट समथिंग और यू वांट टू शेयर समथिंग, आई एम ऑल इयर्स. और हर रोज आपके लिए आफ्टरनून ड्राइव टाइम पे लेकर आती हूँ कुछ नया. आज का दिन बहुत स्पेशल होता है क्योंकि अगर फर्स्ट थर्सडे हो ये महीने का तो लेके आती हूँ आपके लिए फूड जंक्शन, जहां हम बात करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ शहरों की, जो एज अ टूरिस्ट जब हम जाएं तो हमें वहां क्या खाना चाहिए, उनके लोकल फेवरेट्स, उनके देसी फेवरेट्स. और उसी के साथ द रेस्ट ऑफ द थर्सडेज ऑफ द मंथ वी डू 90s का बॉलीवुड. जी हाँ, आप ही की फरमाइश और आपकी पसंद पे वो 90s के बॉलीवुड का सेगमेंट मैंने सुनहरी किरण में डाला है और आपके साथ ये सेगमेंट मेरा भी पसंदीदा सेगमेंट है. सो लेट्स ट्यून इन टू वो 90s का बॉलीवुड राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण.

वो 90s का बॉलीवुड सुन रहे हैं आप. शुरुआत हुई आज की और आज के इस सेगमेंट की खलनायक के इस गाने के साथ, माधुरी दीक्षित एंड संजय दत्त एज वेल एज जैकी श्रॉफ. अच्छा जी, आप सबकी फोन कॉल्स आर ऑलवेज वेलकम. इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू हेयर फ्रॉम यू. और आनंद साहब का हमें फोन आया और वो ये बता रहे हैं कि ही इज ड्राइविंग फ्रॉम मिकिनी टू गार्लैंड और जो है बारिश हो रही है और कभी थोड़ी सी रुक जाती है और फिर एकदम से शुरू हो जाती है और मौसम बड़ा शायराना आशिकाना सा बना हुआ है और भीगा भीगा सा मौसम है. तो कुछ बारिश का गाना सुनना चाहते हैं. ऑफकोर्स आप सब लोग जो बारिश में ड्राइव कर रहे हैं, कुछ एक दो आपके ये जरूर बारिश के गाने लगाएंगे. दिस वन इज वो जो बारिश की बात हो और सबसे पहले जो गाना जहन में आता है उसी से शुरुआत करते हैं. दिस इज फ्रॉम द मूवी मोहरा. आनंद जी, दिस इज फॉर यू.

जी हाँ, आनंद साहब की रिक्वेस्ट पे एक खूबसूरत बारिश का गाना और एक और गाना मोहम्मद साहब की रिक्वेस्ट पे प्ले करने वाली हूँ. एक्चुअली जो गाना आपने रिक्वेस्ट किया मोहम्मद जी, वो 90s से आगे का है. वी आर राइट नाउ इन द वो 90s का बॉलीवुड सेगमेंट, सो कुछ 90s के ही गाने आपके लिए प्ले करूंगी. और ये जो गाना आपके लिए पुल आउट किया है 90s और मतलब बिल्कुल लेट एंड 80s का, फिल्म चांदनी से लिया गया है. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू रियली रियली लाइक इट. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, आप तमाम सुनने वालों को, कि अगर आप किसी स्पेशल मोमेंट के लिए कोई खास तोहफा खरीदना चाहते हैं अपने किसी स्पेशल के लिए या अपने लिए, यू जस्ट वांट टू चेरिश योरसेल्फ, देन हेड टू मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स. दे आर लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. दिस इज योर डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, एलिगेंट, टाइमलेस, एंड इट इज क्राफ्टेड टू शाइन. बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है मालाबार गोल्ड के, पहन के आप वाकई ऐसा लगता है जैसे कुछ रॉयल पहना हुआ है. ब्यूटिफुल रिंग्स, एयररिंग्स, डाजलिंग नेकलेसेस, कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स, मतलब फाइंड द परफेक्ट पीस फॉर एंगेजमेंट हो, एनिवर्सरी हो, सेलिब्रेशन हो, और जैसे मैंने कहा, यू जस्ट वॉन्ट बी नाइस टू योरसेल्फ, यू जस्ट वॉन्ट ट्रीट योरसेल्फ. सो एक्सपीरियंस कीजिए अनमैच्ड क्राफ्ट्समैनशिप एंड ब्रिलियंस एट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स. और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड देयर मोबाइल ऐप, द मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स मोबाइल ऐप, फॉर द लेटेस्ट कलेक्शन अपडेट्स एज वेल एज मोर डिटेल्स. सो गो टू देयर ऐप, योर ऐप स्टोर राइट नाउ एंड डाउनलोड मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स मोबाइल ऐप एंड चेक आउट एवरीथिंग दैट दे हैव टू ऑफर. एंड दिस वन इज गोइंग आउट टू मोहम्मद खान साहब.

वेल बरसात और बरसात से रिलेटेड गाने तो जारी रहेंगे. मेरे ख्याल मानसून बस शुरू ही हुआ चाहता है. वैसे अगले पिछले 2-3 दिन से यही फोकस थी कि बारिश आपको ऑन एंड ऑफ देखने को मिलेगी और कहीं कहीं थंडर स्टॉर्म्स भी. सो प्लीज़ अगर आप बारिश को इन्जॉय भी कर रहे हैं व्हाइल यू आर ड्राइविंग, बी वेरी सेफ एंड ड्राइव केयरफुली. आई विश यू अ सेफ ट्रिप वेयर एवर यू ऑल आर गोइंग. अगला गाना आपके लिए खास तौर पर सफ़ी के लिए प्ले करने लगे हैं, बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू माई टाइम इक्विटी विच इज लेड बाई CPS Sudhir Pai helps individuals as well as families build smarter financial strategies through portfolio management, real estate properties or saath hi saath alternative investments. So agar aap dhoond rahe hain or yeah, you know, you're trying to plan long term wealth ya phir retirement planning karna chahte hain ya aap soch rahe hain, you know, do something to grow your investment, to phir my time equity offer karta hai aapke liye personalized solutions designed around your goals, your wishes, your concerns. To aap my time equity se contact ki tell them what you want and they will be able to guide you step by step through the process. That number is 469-702-1272. 469-702-1272 is that number. Ya phir aap unki website visit kijiye mytimeequity.com. And this next number is going out to Safi. Enjoy.

0: अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में सुन रहे थे आप ये गाना. वी आर हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक. आफ्टर द ब्रेक आई हैव स्टिल लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल म्यूजिक लाइंड अप फॉर यू. स्टे ट्यून्ड.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास. साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास. पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन.
2: ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTax.
1: ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा
2: इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग. और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम.
4: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
5: इट्स लॉसन.
4: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
5: इट्स लॉसन.
4: डैडी व्हाट इज द लॉ?
6: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458. द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल.
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
8: जिंदगी एक रंगमंच है
9: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
10: कॉल 972-897-1530. फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल .com.
11: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
12: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-10.
13: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
14: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
15: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
14: कहाँ?
16: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
17: फूडिस्तान इन ऑबरी. एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, one vibe.
18: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
19: अजी, सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
20: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
20: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
19: सच में सब संभाल लेंगे?
20: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
17: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
21: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: हेलो
1: हेलो,
0: मेरे साथ डांस करोगे?
1: नहीं।
0: ए, जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो।
2: You tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. मैं हूँ किरण आपके साथ. Afternoon Drive Time with सुनहरी किरण में चल रहा है हमारा वो 90s का Bollywood और कुछ 90s की ही सुपर हिट गाने आपके लिए लेकर आए. This was a Love Rap, a very popular song जिसमें नाना पाटेकर थे और ममता कुलकर्णी, साथ ही साथ अतुल अग्निहोत्री थे if I'm not wrong और बिंदु. अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं कि लेकर आई हूँ आपके लिए एक गिव अवे एंड द गिव अवे हैज बीन ब्रॉट टू यू By Neon Cactus. जी हाँ, और इस गिवअवे के साथ आपके लिए लेकर आऊंगी कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण. अच्छा, सबसे पहले तो आपको नियॉन कैक्टस के बारे में बताऊं कि मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पे एक ही जैसा खाना मिलता है, काफी प्रेडिक्टेबल हो गए हैं रेस्टोरेंट्स, तो टाइम इट इज टाइम नाउ टू स्विच टू नियॉन कैक्टस. ये वो जगह है जहां मैक्सिकन फ्यूजन मीट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस. जी हाँ, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, ज़बीहा हलाल ऑप्शंस, प्लेंटी ऑफ वेजिटेरियन चॉइसेस, और जो बेस्ट बात है, हर चीज जो कुछ भी आप खाइएगा इट विल बी पैक्ड विद बोल्ड एंड ब्यूटिफुल फ्लेवर्स. और वाइब तो मतलब आप नियॉन कैक्टस की पूछिए ही मत. यंग, कलरफुल, मॉडर्न, फुल ऑफ एनर्जी एंड इट इज परफेक्ट फॉर हैंग आउट्स, डेट नाइट्स. और उसी के साथ अगर आप कोई अपना वो कहते हैं ना कोई बना रहे चिल प्लान कि आई एम जस्ट गो एंड चिल विद माई फ्रेंड्स, दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू टू गो. दिस इज नियॉन कैक्टस. वंस अगेन, फ्यूजन, मैक्सिकन फ्यूजन मीट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस हेयर. बहुत ही जबरदस्त और क्रिएटिव मेन्यू है नियॉन कैक्टस का, आप जरूर इंजॉय करेंगे. एंड along with that you have curated cocktails, refreshing mocktails, happy hours hota hai inka Monday to Friday and special deals lagi hoti hain every single day. So zarur check out kijiye Neon Cactus ko and you know you will definitely find something jo aapko bahut hi zyada maze ka lagne wala hai. Aur main aapko mauka de rahi hu Neon Cactus jane ka because this is your chance to win a $20 dine in gift card. Aapko restaurant pe ja ke khana hoga aur apna ye $20 अवेल करना होगा. और आपको क्या करना है, कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण ब्रॉट टू यू बाय नियॉन कैक्टस में आज हमारा कॉन्वर्सेशन है बारिश के गानों के ऊपर. जी हाँ, बताइए मुझे, हम सभी का कोई ना कोई बारिश का पसंदीदा गाना है बॉलीवुड का. बारिश होती है तो जहन में सबसे पहले क्या आपके चलता है, जैसे लगी याद सावन की फिर वो झड़ी है, या फिर मेघा रे मेघा, मतलब व्हाट इज इट, व्हाट इज द आइकॉनिक बारिश का गाना दैट यू एसोशिएट, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू सी बारिश. बॉलीवुड का कौन सा गाना आपको याद आता है? 9722355555 is the number to the studio. Fun Asia Radio, you are live on air. Apna naam bataiye.
3: Hello. Can I request for you to play a song?
2: I am in a contest right now. Do you want to tell me what is your favorite Barish ka gana, rain song, Bollywood?
3: My favorite what?
2: All right. Why don't you give me a call again and I will take your request in a bit. All right. We are in conversation corner right now. You have to tell me your favorite Barish ka gana. Naam bataiye apna.
4: My name is Kais, and my favorite song of Barish is Cham Cham.
2: Cham Cham, taken from the movie Baghi, right?
4: Yes, Baghi, yeah, that's my favorite.
2: Okay.
4: It's my daughter's favorite song and my favorite song.
2: That is wonderful. Thank you so much, guys, for your call. Please, sunte rahiye, I'm going to announce the winner in a bit. Fun Asia Radio, you are live on air. What is your name?
5: हाय, मैं सईदा बोल रही हूँ.
2: जी सईदा जी, बताइए.
5: मुझे वो गाना एकदम से याद आया, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा दी.
2: बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही है. बारिश का गाना कोई मुझे कुछ प्ले करने को बोले तो सबसे पहले मेरे जहन में यही गाना आता है जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्ले भी किया था. थैंक यू सईदा जी, सुनते रहिए. आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
6: यास्मीन, यास्मीन बानो.
2: जी यास्मीन, बताइए.
6: मुझे वो याद आ रहा है, अमिताभ बच्चन एंड सुमिता पाटिल, नमक हलाल.
2: जी हाँ, आज रपट जाए.
6: यस यस,
2: राइट ये भी एक बड़ा ही आइकॉनिक गाना है. ठीक है जी, बड़ा खूबसूरत आपने गाना याद दिलाया. और मेरा ख्याल है कि इस जैसा बहुत कम ऐसे खूबसूरत और वो कहते हैं ना नॉटी नॉटी बारिश के नंबर बने.
1: इट्स क्यूट गाना है वो. बारिश बोले आपने तो बस मुझे वो याद आ गया.
2: बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच यास्मीन. सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर कन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण नियॉन कैक्टस. अपना नाम बताइए.
7: शिवानी.
2: जी शिवानी बताइए.
7: मेरा फेवरेट बारिश का गाना है रिमझिम गिरे सावन.
2: रिमझिम गिरे सावन. सुलग सुलग जाइए मन. राइट.
7: Yes.
2: बिल्कुल सही. थैंक यू शिवानी फॉर पार्टिसिपेटिंग. सुनते रहिए, मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ. फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
8: हाय, माय नेम इज एमजे.
2: जी एमजे बताइए.
8: या माय फेवरेट सॉन्ग इज एक लड़की भीगी भागी सी.
2: ओह, एक लड़की भीगी भागी सी. द ब्लैक एंड व्हाइट वन.
8: Yes, that's one.
2: Lovely, lovely. Thank you so much, MGA. Aap sunte rahiye. I am going to announce the winner right after this. Fun Asia Radio, you are live on air. What is your name?
9: My name is Ali.
2: Ji, bataiye Ali.
9: So, Bhigi Bhigi Raaton Mein.
2: Bhigi Bhigi Raaton Mein, is that the one Adnan Sami?
9: Aisa lagta hai. Yeah.
2: Okay. Perfect. Thank you so much, Ali. Sunte rahiye. I'm going to announce the winner right after this. RIG, we are going on a song break. Phone calls aap karte rahiye. I will take you off air now and listen to what you have to say about your favorite Barish ka number, and then I will announce the winner. Stay tuned.

केरल जी नियॉन कैक्टस की तरफ से कॉन्वर्सेशन कॉर्नर आपके लिए लेके आई थी विद सुनहरी किरण, और बात कर रहे थे कि आपको कौन सा गाना बारिश का याद आता है, जैसे बारिश होती है अगर बॉलीवुड से हम बारिश को कनेक्ट करें तो आप सब ने बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत गाने हमें याद दिलाए. थैंक यू सो मच फॉर दैट. आपकी पार्टिसिपेशन इवन आफ्टर यू नो वी गॉट ऑफ एयर, बहुत सारी कॉल्स मुझे आई, और हर शख्स का एक नया ही अंदाज होता है, एक अलग अंदाज होता है बारिश को देखने का. सो थैंक यू, आप सबकी फोन कॉल्स इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट, सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और यू नो जो हमारी आज की लकी विनर हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जिस नंबर से आपकी कॉल आती है, मतलब जिस सीक्वेंस में आती है, उसको हम मैथ के फॉर्मूले में डाल के एक विनर डिसाइड करते हैं. आपकी लकी आपकी विन का फैसला करती है, और आज की लकी विनर हैं जी सबा खान. सबा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. दिस इज यू नो अ $20 गिफ्ट कार्ड फॉर डाइन इन ओनली एट नियॉन कैक्टस. दिस इज एन अमेजिंग रेस्टोरेंट, आप जरूर जाइए. हमें दो दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर वहां पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव अबाउट 5 to 6 डेज टू गो टू नियॉन कैक्टस एंड अवेल योर $20 डाइन इन गिफ्ट कार्ड, एंड दिस इज वैलिड फॉर 30 डेज ओनली. वैसे आप कोशिश कीजिए कि 6 से 7 दिन में चली जाइए ताकि आपका नाम रिफ्रेश्ड हो और विनर्स लिस्ट पे ताजा हो. विद दैट आप तमाम लोग फनी जी इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आते हैं. मेरे पास एक और गिव अवे आपके लिए मौजूद है, वो लेके आऊंगी थोड़ी देर बाद. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर पार्टिसिपेशन. और जिस गाने ने बाजी मारी इस सारे हमारे गिव इस कॉन्वर्सेशन कॉर्नर में, जो सबसे ज्यादा गाना बार बार जिक्र में आया, वो है ये.

दिल तो पागल है से सुन रहे थे आप ये गाना। सबसे ज्यादा तस्करा इसी गाने का हुआ, आप जो कॉलेज थे उन्होंने सबसे ज्यादा इसी गाने का नाम लिया, चक धुम धुम, जो आपको पसंद है या बारिश में याद आता है। शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित, साथ ही साथ करिश्मा कपूर फॉर दिल तो पागल है। और करिश्मा कपूर ने इस फिल्म के लिए जीता था नेशनल अवार्ड फॉर हर रोल, जो कि अगर हम एक अंदाजे के मुताबिक देखें या गॉसिप गलियारों से देखें तो 6 अदर एक्ट्रेसेस, लीडिंग एक्ट्रेसेस ने इस रोल को ठुकरा दिया था, जिसमें जूही चावला, काजोल, मनीषा कोइराला, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी और उर्मिला मातोंडकर शामिल हैं। तो जब सबने ही रिजेक्ट कर दिया, फिर करिश्मा के पास आया ये और करिश्मा ने इस पे हाँ कर दी, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। शी गॉट द नेशनल अवार्ड फॉर दिस। और बाद में कई जगह मैंने सुना भी कि पीपल वर लाइक कि हमें कर ही लेना चाहिए था ये रोल। अगला गाना हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं वो 90s का बॉलीवुड चल रहा है, कुछ 90s के गाने और साथ ही साथ कुछ बारिश की मीठी मीठी यू नो फुहार सा ऐड कर रहे हैं गानों में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूं जी कि अगर आप बिजनेस ओनर हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन, देन ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी। जी हाँ, तारा कमर्शियल एनर्जी प्राउडली सर्व्स टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002। कंपेटिटिव रेट्स हैं, रिलायबल सर्विस है एंड दे कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स फॉर यू। व्हाट एल्स कैन यू आस्क फॉर? गिव देम अ कॉल एटलीस्ट। कोई भी आपका कंसर्न है, क्वेश्चन है, कोई आप और बात सवाल पूछना चाहते हैं तो वन फोन कॉल, दे आर जस्ट अ फोन कॉल अवे। गिव देम अ फोन कॉल एट 844-428-2808। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 844-428-2808। या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल देयर। दिस इज ताराएनर्जी.com।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697433384 9734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
2: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
3: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
4: San Idli Vegetarian Restaurant. 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
3: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
5: सुनीता, तुम्हारे बेटे के माँ काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
6: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
5: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
6: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
7: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटिन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181. मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
8: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
9: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco, offer valid till 19 July only.
10: Beta, 95% aaye?
11: Haan, mummy.
10: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
12: मेरा?
10: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
12: वो
13: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
14: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: I am Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.
16: कितने आदमी थे?
17: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

104.9 FM Fun Asia Radio सुन रहे हैं आप. Afternoon Drive Time with सुनहरी किरण. Monday through Friday 2:30 बजे से 5 बजे तक मैं आपके साथ होती हूँ. आप भी मेरे साथ होते हैं 9722355555 के थ्रू. आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, समा बारिश का है जी, ध्यान से ड्राइव कीजिए. एंजॉयमेंट तो हम वैसे बारिश में करते ही हैं, बट ड्राइविंग हैज टू बी एक्सट्रीमली यू नो कॉशियस आपको होके ड्राइव करना पड़ता है, बिकॉज थोड़ा सा मामला थोड़ा गड़बड़ होता है बारिश के दौरान. तो इसी से मुझे याद आया कि मैं आपको ये बताती चलूं कि अगर अनफॉर्चुनेटली आप या किसी को आप जानते हैं, समवन यू केयर फॉर हैज गॉटन इनटू एन एक्सीडेंट, और साथ ही साथ कोई मसला, कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट है, तो रिकवरी जो है वो ऑफ कोर्स इट टेक्स मच लॉन्गर. एंड यू हैव बीन इन्वॉल्व्ड, अगर कोई जैसे मैंने आपको कहा कोई कार क्रैश है, ट्रक एक्सीडेंट है, स्लिप और फॉल है, तो इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब आपको अपना ख्याल रखना है, अपनी सेहत का, अपनी फिजिकल बीइंग का, अपनी मेंटल और इमोशनल बीइंग का, एंड देन यू हैव टू डील विद द पेपर वर्क, द इंश्योरेंस कंपनीज, द निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन, द लीगैलिटीज, यू रियली डोंट वांट टू डू दैट. लेट अटर्नी उमर ख्वाजा हेल्प यू एंड हैंडल द लीगल बैटल वाइल यू फोकस ऑन योर हीलिंग. ही विल फाइट फॉर द कॉम्पनसेशन दैट यू आर एंटाइटल्ड फॉर. और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग जब तक कि आप जीत नहीं जाते. सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन. ऐसी मुश्किल के समय में या घड़ी में राहत की खबर है ये आपके लिए. सो गिव अटर्नी उमर ख्वाजा अ कॉल फॉर फ्री कंसल्टेशन. ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 4693005046. इस नंबर को मैं तो समझती हूँ कि आप अपने फ़ोनों में सेव कर लीजिए, अपने कॉन्टैक्ट्स में सेव कर लीजिए. अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे कोई इस तरह की सिचुएशन आपकी या कोई भी अचानक से अराइज हो, यू शुड हैव दिस नंबर सेव्ड इन योर कॉन्टैक्ट्स. वंस अगेन, अटर्नी उमर ख्वाजा'स ऑफिस नंबर इज 4693005046. और आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, विच इज attorneyomar.com. वंस अगेन, दैट वेबसाइट इज attorneyomar.com. और अब जब हम इस गाने के बाद वापस आएंगे तो मैं आपको ट्रैफिक की अपडेट देने वाली हूं, ताकि आपको पता चले कि इस वक्त रोड्स की क्या कंडीशंस हैं. कुछ मुझे इंसिडेंट्स नजर आ रहे हैं, एंड दैट ट्रैफिक अपडेट विल बी ब्रॉट टू यू.

टेकन फ्रॉम द मूवी घायल सुन रहे थे आप ये गाना. और अब जी आपके लिए लेकर आई हूँ एक और गिव अवे एज प्रॉमिस. लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ट्रैफिक के बारे में जरूर बताऊंगी. द ट्रैफिक अपडेट ब्रॉट टू यू बाय द लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा. द बेस्ट थिंग इज के ऑल्दो मौसम खराब है लेकिन ट्रैफिक में हमें कुछ बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स देखने को नहीं मिले. दो तीन कंस्ट्रक्शन हो रही हैं जिनकी वजह से कुछ बैकअप इस स्पॉट पे आपको मिल सकता है. जैसे कि 35 ईस्ट पे एट रीगल रोज साउथ बाउंड देर इज अ कंस्ट्रक्शन जिसकी वजह से टू लेन्स आर काइंड ऑफ पार्शली ब्लॉक्ड. इसी तरह एक और कंस्ट्रक्शन है 35 ईस्ट पे टूवर्ड्स कॉमनवेल्थ ड्राइव ड्यू टू विच टू लेन्स आर ब्लॉक्ड एज वेल. उसके अलावा एक कोलिजन जो हमें नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 30 पे IH 30 पे टूवर्ड्स हराइजन रोड ईस्ट बाउंड जिसकी वजह से टू और थ्री लेन्स आर ब्लॉक्ड. लेकिन चूंकि ये इंसिडेंट अबाउट 3-4 घंटे पहले का रिपोर्ट हुआ है तो आई एम होपिंग दैट यहाँ पे आपको अब ओपनिंग्स मिलनी शुरू हो गई होंगी. दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर योर ट्रैफिक इज कंसर्न्ड राइट नाउ ऑन द रोड्स ऑफ डैलस. और अब वक्त आ चला है आपके लिए एक गिव अवे जो मैंने आपसे जैसे कहा था एज प्रॉमिस्ड. आज मेरे पास आपके लिए दो गिव अवेज थे एंड दिस इज A giveaway brought to you by Mirage Lounge. जी हाँ जी, अगर आप ढूंढ रहे हैं your next favorite hangout spot, then Mirage Lounge is the place for you. यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा ये तो आप जब जाएंगे तो एक्सप्लोर करेंगे. लेकिन इंजॉय कर सकते हैं आप प्रीमियम हुक्कास, डिलिशियस बाइट्स, हैंडक्राफ्टेड कॉकटेल्स, लाइव म्यूजिक और साथ ही साथ एक्साइटिंग डीजे नाइट्स. सब कुछ मिराज लाउंज आपके लिए लेकर आता है. और बेस्ट पार्ट ये है कि हैप्पी आवर रन्स मंडे थ्रू थर्सडे फ्रॉम 11 AM टू 6 PM. मतलब पूरा दिन ही हैप्पी आवर रहता है, कभी भी जाइए. फीचरिंग हुक्कास स्टार्टिंग एट जस्ट $24.99 and shots for just $4.99. Plus, आप बिल्कुल मिस मत कीजिए उनकी लेडीज नाइट एंड कॉलेज नाइट भी होती है. चेकआउट कीजिए और आपको मजीद डिटेल्स इसके बारे में पता लगेंगी कि क्या होता है कॉलेज नाइट में और क्या होता है लेडीज नाइट में. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू विजिट मिराज लाउंज. इट इज लोकेटेड ऑन मिकनी रैंच पार्कवे बिकॉज ऑफकोर्स दिस इज अ प्लेस जहां आपको सब कुछ मिलेगा, खाना पीना पार्टी एंजॉयमेंट. यू विल जस्ट हैव अ लॉट ऑफ फन. और अब मेरे पास ये गिव अवे है, मैं दो विनर्स सेलेक्ट करने वाली हूं. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको और गिव अवे क्या है आपके लिए. $20 आपको ऑफ मिलेंगे व्हेन यू गो टू द रेस्टोरेंट एंड डाइन इन एंड योर बिल इज अबाउट $50 और मोर. सो मिनिमम आपको डाइन इन बिल $50 का अगर आपका बनता है तो $20 आपको ऑफ मिल सकते हैं उस बिल पे. दैट इज अ ह्यूज सेविंग. तो आपको क्या करना है जी, अब मैं आपके लिए एक गाने का शुरुआत का म्यूजिक प्ले करने वाली हूँ और आप मुझे कॉल करके बताएंगे कि ये कौन सा गाना है. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. चलिए फिर हम गाने की शुरुआत सुनते हैं. सुनिए और मुझे कॉल करके बताइए ये कौन सा गाना था और गाने के साथ फिल्म का नाम भी बता देंगे तो सोने पे सुहागा.

972-235-5555 पे कॉल कीजिए, बताइए ये कौन सा गाना था और जीत लीजिए ये $20 ऑफ विद अ मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 फ्रॉम मिराज लाउंज. गिव मी दैट कॉल.

जी हाँ, मिराज लाउंज की तरफ से गिव अवे आया है आपके लिए. मैंने दो विनर्स सेलेक्ट किए हैं जी. $20 का ये ऑफ था आपके लिए, मिनिमम डाइन इन बिल पे ऑफ $50. गाना आपके लिए प्ले किया था और आपसे कहा था कि ये म्यूजिक सुन के, गाना नहीं शुरू का म्यूजिक सुन के मुझे बताइए कौन सा गाना है. और आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया. यास्मीन, मेघा, स्मर्थ, साथ ही साथ आशीष, सोनम, अनु, थैंक यू सो मच आप सबकी फोन कॉल्स का और बिल्कुल सही जवाब का. सबसे पहले तो जवाब बताते चलें. दिस वॉज माई नी माई मुंडेर पे तेरी, बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा. जोगी भी सामने ही बैठे थे माधुरी के, सलमान खान. हम आपके हैं कौन से लिया गया था ये गाना. तो विनर अनाउंस कर दिए. दो नाम मैं आपको बताती हूँ जिन्होंने ये मिराज लाउंज जीता है. जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, नाम आपका मैप के फॉर्मूले में डल के आप ही की किस्मत, आपकी लक और विन आपकी डिसाइड करती है. सो हमारे आज के लकी विनर हैं समर्थ खारे और साथ ही साथ सेकेंड लकी विनर हैं अनु मधुरी. सो अनु एंड समर्थ, कंग्रेचुलेशंस, आप दोनों ने जीत लिया है ये गिव अवे. दिस इज अ $20 ऑफ विद मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 फ्रॉम मिराज लाउंज. सो एंजॉय कीजिए. दिस इज लोकेटेड ऑन मिकनी रैंच पार्क वे. दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए. एंड देन यू विल हैव अबाउट 5 to 6 days टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर $20 ऑफ व्हेन यू स्पेंड $50 और मोर, डाइन इन ओनली. तो कंग्रेचुलेशंस. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. आपकी पार्टिसिपेशन इज वॉट मैटर्स द मोस्ट इन फनेशिया. कीप्स ब्रिंगिंग यू लॉट्स ऑफ गिवअवेज. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
7: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
8: Tarikh par tarikh, tarikh par tarikh.
0: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
7: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
9: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan और सफलता के योग
10: हैं। अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
14: लिया।
13: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
14: नहीं आया।
13: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
15: Visit www.senadainc.com today.
16: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
17: Calculating route, rerouting.
16: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
17: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
16: क्यों?
17: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
16: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
15: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
17: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
18: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
19: क्या?
18: सैलरी बंद हो जाती है
19: और बिल्स बंद नहीं होते।
18: एग्जैक्टली, इसलिए स्मार्ट लोग वेल्थ टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं।
19: मतलब
18: ऐसी स्ट्रेटजी जहाँ इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता।
0: द वेल्थ टैक्टिक, smart strategy for your retirement years. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
20: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
0: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
14: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
21: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Funisia Radio.

This part of our show is brought to you by AG FinTechs, one of the fastest growing tax firms and accounting firms in the US. Whether you're an individual, ya aap ek startup hain, ya phir an established business, AG FinTechs offers innovative financial solutions jo ke aapki needs ke around tailor kiye jaate hain, from bookkeeping and payroll accounting and bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting, as well as business advisory services. They help keep your finances organized, compliant, and future ready, which is of course very, very important for us. Chahe hum kuch bhi, kisi bhi capacity mein ho, individual, startup, established business, whoever, they are trusted, they are efficient, and they are committed to your success. So AG FinTechs, aapke partner hain ji in building a strong financial future for you. And what can you do? You can give them a call if you have any questions, any concerns. Koi bhi sawal aapke zehen mein aaya hai ye baat sunke, to AG FinTechs and their team are here to guide you. Give them a call, 469-942-9888 is that number, 469-942-9888, ya phir aap unki website visit kar sakte hain, which is agfintax.com. FINTAX, AGFINTAX.com. आप सुन रहे हैं आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. गाना सुन रहे थे आप ये टेकन फ्रॉम द मूवी कभी हाँ कभी ना, जिससे हमने अभी सेगमेंट के बाद या ब्रेक के बाद शुरुआत की. और आपको बताऊं जी कि शाहरुख खान इस मूवी की पहली चॉइस नहीं थे. डायरेक्टर्स ने आमिर खान और जूही चावला को, मेरा ख्याल है जो मेकर्स थे इस फिल्म के, उन्होंने कन्फर्म किया हुआ था. कहते हैं गॉसिप के गलियारों में कि आमिर खान और जूही चावला साइंड थे इस फिल्म के लिए, पर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आमिर खान ने अपना इंटरेस्ट इस मूवी से लूज कर दिया. आपको पता है आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट, कभी भी उनका कुछ भी बत्ती गुल हो जाती है उनकी, तो कुछ चेंज हुआ और ही ऑप्टेड आउट ऑफ द मूवी, एंड दैट इज व्हेन शाहरुख खान बिकेम द फर्स्ट, द सेकंड, बट द अल्टीमेट चॉइस फॉर द फिल्म.

फिल्म रंगीला से सुन रहे थे आप ये गाना, और रंगीला ने तो खैर रिवोल्यूशनाइज कर दिया था हिंदी सिनेमा को। एआर रहमान साहब ने पहली बार फर्स्ट ओरिजिनल हिंदी साउंड ट्रैक दिया इस मूवी का, लॉन्चिंग उर्मिला मातोंडकर, और साथ ही साथ मनीष मल्होत्रा भी बने इस ही मूवी से ओवरनाइट सेलिब्रिटी। इससे पहले मनीष मल्होत्रा जो हैं वो एक यू नो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, जस्ट अ रेगुलर कॉस्ट्यूम डिजाइनर, बट आफ्टर स्टाइलिंग उर्मिला मातोंडकर आइकॉनिक ट्रेंड सेटिंग लुक इन दिस फिल्म, ही कैप्चर्ड द मेन स्ट्रीम फैशन डिजाइन फेम एंड देन ऑफ कोर्स देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो कुछ मूवीज होती हैं, कुछ फिल्में होती हैं जो कि किसी शख्स की जिंदगी की ट्रैजेक्टरी या पहचान बदल देती हैं, एंड दिस रियली वर्कड फॉर डिड द सेम फॉर उर्मिला एज वेल एज मनीष मल्होत्रा। अच्छा जी, ये तो हुई है बात। अगला गाना आपके लिए बड़ा ही प्यारा लाइंड अप है। दिस इज दिस बिकेम अ सेंसेशन, दिस वर्ड बिकेम अ सेंसेशन इन 90s, और जिसको भी किसी से प्यार हो जाता था वो यही कहता था क्या हुआ, सब दोस्त पूछते थे क्या हुआ ये से क्या हुआ, तो फिर कहते थे लवेरिया हुआ।

अपॉइंटमेंट फ्री जगह है, आपको सिर्फ ये करना है कि वॉक इन करना है और टेक्सस प्राइमरी केयर यानी कि लिनॉक्सी मेडिकल विल टेक केयर ऑफ यू. नाइन्स आप जो है ज़रूर ये अपॉइंटमेंट बुक कीजिए. अगली बार आप अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, एनी थिंग दैट यू हैव, एनी कंसर्न दैट यू हैव, लिनॉक्सी मेडिकल इज हेयर टू हेल्प यू. और ये जो आप अगला गाना सुन रहे हैं ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, गोविंदा और दिव्या भारती पे ऊपर के ऊपर ये फिल्म पिक्चराइज थी. The first half was extremely, happy, smiley, बहुत ही relaxed, बहुत ही refreshing first half तक, और second half was very, very tense. But that is what makes this movie extremely special. This is Shola और Shabnam.

0: और यही मेरे ख्याल है गाना अक्सर हमने सुना और सुनते भी हैं. वी लॉस्ट दिव्या भारती एट अ वेरी वेरी यंग एज. और आई डोंट हैव वर्ड्स टू सेव. आई स्टिल रिमेम्बर द डे जब हमारे अखबार में ये खबर प्रिंट हुई थी. तो सोशल मीडिया का ज़माना तो हुआ ही नहीं करता था, तो अखबार में शाम का जो इवनिंग स्पेशल आता था उसमें ये खबर प्रिंट हुई और फिर वी गॉट टू रीड इट. एंड व्हाट अ लॉस. आई थिंक शी वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट वी हैड एट दैट टाइम. एनी वेज जी, विद दैट हमारे 90s के बॉलीवुड का हो चुका है इख्तिताम. वी आर हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक. स्टे ट्यून्ड.
1: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में. सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ. वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर.
2: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
3: हाँ.
2: घर रिलोकेट करनी है?
3: हाँ.
2: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
3: हाँ भाई हाँ.
2: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
4: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
5: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
6: Excuse me. It's called being loyal.
5: It's called being predictable.
6: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
5: And what's so special at Neon Cactus?
6: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabia halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
5: Not bad.
6: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
5: Okay, this I didn't expect from you.
6: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
7: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
8: इट्स लॉसन.
7: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
8: इट्स लॉसन.
7: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
9: इट्स लॉसन ट्रेवल्स फॉर ऑल योर ट्रेवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458. द ट्रेवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रेवल.
10: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
11: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
12: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है. और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
13: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
12: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
13: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
14: क्या मतलब?
15: Oura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
15: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
14: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
16: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant.
3: में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चकचाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 ईयर्स और ओल्डर टू गेम.
8: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM.

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. Afternoon drive time with Suneri Kiran में अभी अराउंड 22 मिनट्स मेरे और आपके एक साथ बाकी हैं 104.9 FM पे. और हर रोज आप मुझे सुनते हैं मंडे थ्रू फ्राइडे 2:30 PM till 5 PM. और मैं आपको बताऊं जी, क्या आपको मालूम है कि क्या कौन सी पर्सनालिटी डालस में आने वाली है? ये खबर आप पे ब्रेक कर रहे हैं. मथांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप proudly brings India's Michael Jackson. जी हाँ, यही है इनके लिए बेहतरीन खिताब. प्रभु देवा आ रहे हैं लाइव टू DFW. और joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bahaduria, Alexander Noel और साथ ही साथ Harini, Natasha Sherpa as well as Sanvi Meghna for the ultimate पैन इंडियन डांस कॉन्सर्ट. मतलब अब आप सोचो कि क्या होने वाला है इस कॉन्सर्ट में. एक तो प्रभु देवा, ऊपर से लॉरेन, ऊपर से सोनल. ओ माई गॉड, ऑल द वंडरफुल नेम्स ऑफ स्टेज परफॉर्मेंसेस. और ये होगा आपके लिए अगस्त 1st को. जी हाँ, सैटरडे है अगस्त 1st. दिस इज हैपनिंग एट द टेक्सस ट्रस्ट CU थिएटर लोकेटेड इन ग्रैंड प्रेरी. तो अगर आप अभी से, वो कहते हैं ना, मूव इन ग्रूव के मूड में आ गए हैं, तो जल्दी से टिकट्स खरीद लीजिए. You have to call at this number to get your tickets. Single tickets chahiye, group tickets chahiye, anything and everything. This is the number where you're going to call. That number is 248-233-3828. Ek baar phir number note kar lijiye. This is 248-233-3828. And their proud media partner is, of course, Fun Asia Network. तो एक बार फिर आपको बताती चलूं, August 1st को प्रभु देवा और उनकी टीम आ रही है live right here in DFW. That is Saturday at Texas Trust CU Theatre in Grand Prairie. Do not miss this happening concert. और प्रभु देवा का नाम आए तो ये गाना ना play किया जाए तो हो जाएगी बहुत नाइंसाफी.

प्रभुदेवा का चार्म कुछ ऐसा है जी। माधुरी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये गाना करते हुए वो हो गई बीमार। जी हाँ, एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था प्रभुदेवा के साथ कदम से कदम मिलाने का, यानी कि डांस स्टेप्स मिलाने का। सो आई हर्ड दैट इंटरव्यू जहाँ उन्होंने कहा कि इतना मेरे पर स्ट्रेस हुआ और मैं इतना ज़्यादा यू नो नर्वस थी पर प्रभुदेवा के साथ परफॉर्म करने के लिए इस गाने पे, कि आई फेल इल एंड देन ही वॉज अ ट्रू जेंटलमैन एंड ही यू नो गाइडेड मी एंड ही वॉज रियली सपोर्टिव। तो इट विल बी रियली फन टू वॉच प्रभुदेवा लाइव इन DFW। अपने टिकट जरूर खरीदिए। और अब आप वक्त आ चला है आपको देने का वेदर अपडेट। थर्सडे जुलाई 16th 4:46 PM इन द स्टूडियो, और सिटी ऑफ मेकिनी में इस वक्त है 84 degrees। हाउ एवर इट फील्स लाइक 90 राइट नाउ। दिन आपका मोस्टली क्लाउडी रहा, 40% चांस ऑफ शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स रहे, कहीं कहीं बारिश हुई कहीं कहीं नहीं हुई, हाईज इन दी अपर 80s। जबकि शाम रहेगी मोस्टली क्लाउडी एज वेल, 20% चांस ऑफ शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स इन द इवनिंग एज वेल। ह्यूमिड होगा विद लोज इन दी मिड 70s। पोलन काउंट आज का वेरी लो 2.4, सो दैट इज गुड। जबकि आज का यूवी इंडेक्स इज 10 अगेन, क्योंकि जाहिर है इतना गर्मियों का मौसम है तो आप अपने आपको हाइड्रेटेड रखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सनराइज आज का हुआ 6:28 AM पे, जबकि आज का सनसेट होगा 8:36 PM। एंड आफ्टर दिस सॉन्ग आई विल ब्रिंग यू द करेंसी अपडेट, गोल्ड प्राइस अपडेट, एक बार वेदर ट्रैफिक की अपडेट आपको देते चलेंगे, ताकि अगर आप डालस की रोड्स पे कहीं ऑफकोर्स ड्राइव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या नजर आ रहा है हमें रोड पे। सो मच मोर लाइंड अप फॉर यू, स्टे ट्यून्ड।

एंड विद दैट इट इज टाइम फॉर अ रैप. लेकिन उससे पहले आपको ट्रैफिक अपडेट देते चलें जी. इस वक्त दो इंसिडेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं राइट नाउ IH 30 पे. द फर्स्ट वन इज एन एक्सीडेंट और अ कोलिजन हैपनिंग एट IH 30 टुवर्ड्स FM 551 वेस्ट बाउंड, जिसकी वजह से टू आउट ऑफ फोर लेन्स आर ब्लॉक्ड. द सिवेरिटी ऑफ द इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई. अबाउट 20-25 मिनट्स पहले ये इंसिडेंट रिपोर्ट और वेरीफाई हुआ है, तो आपको यहाँ पे काफी सारा बैकअप देखने को मिल सकता है. देयर इज अनदर इंसिडेंट दैट इज रिपोर्टेड एट 161 टुवर्ड्स SH 114 साउथ बाउंड, जिसकी वजह से टू आउट ऑफ सिक्स लेन्स आर ब्लॉक्ड. द सिवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज रिपोर्टेड एक्सट्रीमली हाई एज वेल. अराउंड 4:35 से 4:40 के दरमियान ये इंसिडेंट वेरीफाई हुआ है, तो आपको बहुत सारा बैकअप इस स्पॉट पे भी अभी देखने को मिल रहा है, बिकॉज आई कैन सी लॉट्स ऑफ रेड लाइन्स बिल्डिंग अप एंड लॉट्स ऑफ ट्रैफिक बिल्डिंग अप. बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव for you where your traffic is concerned right here on the roads of DFW is waqt. So drive safe, drive carefully, especially is mausam mein thoda sa aur zyada tricky ho jati hai situation. Main aapse milungi kal and thank god it's Friday tomorrow. Bacha party ready ho jaiye. 3 PM to 4:30 PM I will be here live with you, taking your calls, your request, playing your favorite music. But for everyone else, of course, I will be here 2:30 PM till 5 PM. Lots of music, lots of masti, kamal, dhamal, everything right here on Fun Asia Radio. Stay tuned.

0: गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: अरे यार, घर मिल गया।
1: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
2: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
1: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
2: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
1: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
1: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
1: ये क्या होता?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
2: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
6: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
7: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
6: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
7: वेट, व्हाट?
2: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
8: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
2: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
2: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
10: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
11: In one moment, an accident can change

माय गॉड, घड़ी डिटर्जेंट था ना, घड़ी डिटर्जेंट, उससे भी ज्यादा खराब हो गई जिंदगी। लोग इस्तेमाल तो करते हैं पर विश्वास नहीं करते ब्रो।

खड़ी डिटर्जेंट टिकिया या पाउडर लाओ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। भाई ये मतलब अब क्या करूं मैं, घड़ी ले आऊं शायद उससे कोई फर्क पड़े, क्योंकि पाउडर और साबुन का तो गेम ओवर है ब्रो। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आपके लिए, ब्रेकिंग न्यूज बिल्कुल सनसनीखेज खबर है कि क्रीम वाले बिस्किट में क्रीम होती है लेकिन टाइगर बिस्किट में टाइगर नहीं होता। और अगर आपकी बीवी ने सब्जी बनाई हो और उसमें पनीर खत्म हो गया हो तो कोई बात नहीं, कश्मीरी पुलाव में कौन सा कश्मीर होता है ब्रो।

You're listening to the Evening Drive Time Show, 5:26 in the studio clock, and what a wonderful game of soccer we saw yesterday. आज का इंडिया और इंग्लैंड का गेम फिर से यार, इंग्लैंड मतलब इंडिया ने ना मेरे मतलब उम्मीद बिल्कुल तैयार करके फिर से इन्होंने उस उम्मीद का गला घोट दिया दोस्तों. कोई बात नहीं, पहले बल्लेबाजी की इंग्लैंड ने 233 रन बनाए इन देयर 44 ओवर्स. ऑल आउट हो चुके थे, क्या करें, मतलब डेप्थ ही बहुत है ना इंडिया की बैटिंग में. 10वें नंबर तक का जो बल्ले गेंदबाज है वो भी बैटिंग कर लेता है, तभी ये ज्यादा जल्दी ऑल आउट हो जाते हैं. खैर, रोहित शर्मा 26 of 47, शुभमन गिल 31 of 30, विराट कोहली साहब का बल्ला आज चला 65 of 66, चलो इनको कुछ कह नहीं सकते. उधर से श्रेयस अय्यर मिस्टर डिपेंडेबल, ये जो हरियाणा का छोरा है, 66 रन इन्होंने बनाए जी. टोटल ले गए जी 233, बट इंग्लैंड केम बैक स्ट्रॉन्ग. एक बारी लगा था कि ये शायद पारी हार जाएगी इंग्लैंड, बट द वे जो रूट प्लेड मैन, 99 नॉट आउट इन 133 डिलीवरीज, टेकिंग द टीम टू विक्ट्री ऑल ऑन हिज शोल्डर्स, टेकिंग द टीम टू 235 फॉर 6 एंड 44.1 ओवर्स. So congratulating England, अभी तक सीरीज 1-1 है, देखते हैं आगे क्या होगा. फिलहाल गानों का माहौल है जी, बरसात कहीं कहीं जगह हो रही है. एंड इफ यू आर इन द रेनी एरिया ऑफ DFW टुडे, कॉल मी एंड लेट मी नो, ताकि मैं आपसे कुछ बरसात की बातें और कुछ बरसात के मौसम में

0: टेकन फ्रॉम द मूवी जिसका नाम था जी चांद मेरा दिल, और फालतू में ही कटेगा आपका बिल अगर आप इस फिल्म को देखेंगे। ऑल्दो इज यशराज प्रोडक्शंस, बट आई थिंक इट्स अ बिल्कुल ही खतरनाक फालतू की फिल्म मूवी है भाई। कोई मजा नहीं है इसमें, आपके सिर्फ पैसे ही बर्बाद होंगे और कुछ नहीं होगा, टाइम भी बर्बाद होगा क्योंकि 3 घंटे 2.5 घंटे मतलब 2 घंटे की, 2.25 घंटे की फिल्म है। मैंने देखी और फिर मैंने कहा कि मैंने ये क्यों देखी। खैर, डैलस फोर्ट वर्थ की मार्केट जो है जी, आपकी भी खासियत ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा एंटरप्रेन्योरल हैं और हमारे DFW में बहुत सारे बिजनेसेस हैं दैट ओपन एवरी नाउ एंड देन, एंड द वन थिंग दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर एनी बिजनेस इज़ भैया कैपिटल कहाँ से लाऊँ, कैसे मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊँ, कैसे मैं उस फ्रेंचाइज को लूँ जिसको मैं लेना चाहता हूँ। वेल, इसके सवालों का जवाब आपको मिलेगा शाहिद पंजवानी से, हु इज़ विद द SBA लोन एक्सपर्ट एंड दे आर द एक्सपर्ट, चाहे फ्रेंचाइज स्टार्टअप करना हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो, लेट मी कॉल हिम एंड टेल यू कि कैसे आपके सपने पूरे हो सकते हैं। शाहिद भाई, वेरी गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग टू यू भाई एंड ऑल लिसनर्स।
0: सवाल हमेशा मुद्दे का यही होता है, मैं फंडिंग कहां से लाऊं, नया बिजनेस, फ्रेंचाइज, क्या ऑप्शंस है, व्हाई डोंट यू शेयर दैट?
1: सो वी यूजुअली टॉक अबाउट एसबीए लोन, कन्वेंशनल लोन, बट आई एम टॉकिंग गोइंग टू टॉक अबाउट अ न्यू ऑप्शन टुडे व्हिच वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट, एंड लेटली काफी लोग उस रास्ते पर जा रहे हैं। बट क्विकली इंट्रोडक्शन, SBA लोन से हम हेल्प कर सकते हैं अगर कोई बिजनेस खरीदना चाहता है और लोन चाहिए, 10% डाउन ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट एंड यू कैन गेट द लोन फॉर द रिमेनिंग मनी, दैट इज SBA लोन। देन देयर इज अ कन्वेंशनल लोन ऑप्शन वेयर यू नीड 20% डाउन, तो अगर 5 लाख का प्रोजेक्ट है तो 10% डाउन SBA में होगा, कन्वेंशनल में 20% डाउन होगा। नाउ द थर्ड ऑप्शन दैट वी हैव बीन डूइंग लेटली, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट, इज जो लोग घर ओन करते हैं डैलस फोर्ट वर्थ एरिया में या ऑस्टिन ह्यूस्टन व्हाटएवर समवेयर इन टेक्सास, बहुत प्रॉपर्टी की वैल्यूज अप्रिशिएट हुई है पिछले 5 से 10 साल में। अब सिंस SBA ने रूल चेंज कर दिया है कि ओनली सिटीजन्स कैन गेट अ लोन टू SBA लोन, एंड मेनी पीपल हु वांट टू बाय बिजनेस दे बीइंग ग्रीन कार्ड और सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट वीजा आर नॉट एलिजिबल फॉर SBA एनीमोर, ईदर दे कैन डू कन्वेंशनल और वी कैन हेल्प यू गेट equity from your home. If you own a house, primary residence or an investment property, and then you have equity in it, we can help you get the loan from the equity, and we do not have to touch the original loan. Many people who have loans, who borrowed money jab interest rate bahut kam chal rahe the, un time pe unhone loan le liya, aur jab ab equity ke loan ki baat aati hai to unko aisa lagta hai ki I have to refinance my house. No, you do not have to refinance your house. A quick example, agar aapke ghar ki value $5 lakh hai aur usme let's say 100,000 का लोन बैलेंस है, यू हैव $400,000 इन इट, वी कैन गिव यू द लोन जस्ट टूवर्ड्स द इक्विटी ऑफ योर हाउस, वी डू नॉट हैव टू टच योर एग्जिस्टिंग लोन अनलेस इफ यू वॉन्ट टू रीफाइनेंस, इफ इट इज अ हाई इंटरेस्ट रेट एंड यू वॉन्ट टू रीफाइनेंस, येस वी कैन डू इट, बट इफ इट इज अ वेरी डिसेंट रेट देन ओनली थिंग वी कैन टच इज गिव यू लोन टूवर्ड्स योर इक्विटी। अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या कंफ्यूजिंग साउंड करता है और किसी को अपने होम इक्विटी को जस्ट खाली एक्सप्लोर करना है कि मेरे घर में इक्विटी कितनी है, मुझे कितनी की लोन मिल सकती है, क्या इंटरेस्ट रेट होगा, क्या टर्म्स होंगे, कॉलर्स विल गो थ्रू ईच सिनेरियो विल बी डिफरेंट एंड दिस अप्लाइज टू बोथ प्राइमरी रेसिडेंसेस एज वेल एज वी कैन डू दिस for your investment property if they have equity in it.
0: Wonderful. 817-786-3338 is the phone number. 817-786-3338. That is Mr. Shahid Panjwani with the SBA loan expert.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Heere moti main chahu.
3: Achha, manifest karne se pehle thoda dobara soch lo kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
4: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
5: Calculating route. Rerouting.
4: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
5: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
4: Kyun?
5: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials. Authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
4: Achha. तो सीधा वही ले चलो
6: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
5: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
7: जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना
8: लाइफ हो या हेल्थ कब क्या हो जाए पता नहीं 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइज़र वे स्वीट 205 फ्रिस्को
9: तारा वो तारा हर तारा
8: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
10: Immigration is a serious concern for our community and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
13: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
15: जिंदगी एक रंगमंच है
16: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो हर कदम आपके साथ
17: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com
18: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
19: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
18: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
19: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
18: सच में सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
20: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

0: ये लड़की किसी के हाथ नहीं आएगी और आपकी क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स है ना वो भी खत्म नहीं हो पाएंगी अगर आप मिनिमम पेमेंट करते रहेंगे। आपको लगेगा कि मैं तो अपना कर्जा उतार रहा हूँ बट वो कर्जा उतरेगा ही नहीं। एंड क्रेडिट कार्ड इज अ विशियस सर्कल भैया। एंड आई अंडरस्टैंड कि ये आपने जाने अनजाने में ये डेट जो है आप पे पाइल हो गया है, कोई मजबूरी हो सकती है, सम फैमिली इमरजेंसी, सर्टन सिचुएशंस इन लाइफ, सम जॉब लॉस, बट ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स यू नो इफ आर नॉट, वो कहते हैं ना सही डॉक्टर अगर बीमारी का नाम मिले तो बीमारी दबकर रह जाती है और बाद में आके बहुत परेशान करती है। सो ये जो क्रेडिट की बीमारी है, इस क्रेडिट की बीमारी को दूर करने के लिए हमारे पास डॉक्टर हैं जी, और वो डॉक्टर नेशन वाइड काम करते हैं। ura.org से इनका ताल्लुक है और आज मैं इनवाइट करूंगा
1: अमन, हो गया ना?
0: मैं इनवाइट करूंगा जी अमन को टू टेल यू मोर कि किस तरह से ये जो क्रेडिट वाली बीमारी है, जो क्रेडिट का कैंसर है, ये जो लोन पेमेंट्स हमारे पास फंसी हुई है, इस बीमारी को कैसे दूर किया जा सकता है। अमन जी, व्हाई डोंट यू बी द डॉक्टर टुडे?
1: यस श्योर, फाइनेंशियल सुनने वाले सभी लिसनर्स को ऊरा और अमन की तरफ से नमस्कार। सो दोस्तों, बात वही है पुरानी, एक बार फिर से है दोहरानी कि क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट से नहीं उतरता, क्रेडिट कार्ड उतरता है थोड़ी जुगतबाजी से, यानी कि सेटलमेंट करके। अगर आप परेशान हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा इतना ज्यादा चढ़ गया है और आप हर महीने दर महीने सोचते हैं कि अगले महीने पक्का मैं उतार दूंगा या अगले महीने कोई ऐसी जादू की छड़ी घुमाऊंगा जिससे सारे क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतर जाएगा, तो वो गलत है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड वाले आपसे 40% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जिसके कारण आपका क्रेडिट कार्ड टस से मस नहीं होता, हिलता नहीं है, पे ऑफ नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का कर्जा आधे से ज्यादा माफ हो जाए, ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड, आपके बिजनेस के क्रेडिट कार्ड, स्टोर के क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स या गाड़ियां जो रीपोजेस हो चुकी हैं उन लोन्स को भी नेगोशिएट करके आधे से ज्यादा माफ करवाया जा सकता है। तो इसलिए बैंक्रप्सी से बचें, बैंक्रप्सी आपके क्रेडिट को खराब करती है, रून करती है और थ्रू आउट लाइफ आपका पीछा करती है। इंस्टेड ऑफ फाइलिंग अ बैंक्रप्सी, गो फॉर अ सेटलमेंट। सेटलमेंट से आपका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है और साथ ही साथ आपका क्रेडिट भी बचता है और आपको नए लोन आराम से मिलते हैं और आधे से ज्यादा कर्जा भी माफ हो जाता है। तो दिस इज रियली गुड आइडिया। आप कॉल कीजिए ऊरा को और डेट सेटलमेंट के लिए पूछिए कैसे कि क्रेडिट कार्ड का कर्जा माफ हो सकता है। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914, या फिर आप मुझसे भी बात कर सकते हैं 916-7763-555, 916-7763-555, अगेन 916-7763-555। तो आगे से कॉल कीजिए मिनिमम पेमेंट करने से पहले और कर्जा आधे से ज्यादा माफ।

0: All right, Juggy D with Jay Sean in this track. But let's see who do we have here on the airwaves of Fun Asia. Good evening to you. Radio volume low. What's your name?
1: Hi, my name is Mugda.
0: Hi, Mugda. How are you?
1: I'm doing very well. Hi, Marvin. How are you?
0: Very good. Very good, Mugda. Do you know which actress I'm talking about?
1: I quickly Googled it. It seems it is Katrina Kaif.
0: You quickly Googled it. Seems it's Katrina Kaif is what Mugda is saying. Mugda, let's see if you have the right answer or not. I have a caller number 3 who's going to give me the right answer. Who's going to win this one. Let's see who do we have on number 2 who can make the right guess on this one. Good evening, Fun Asia. What's your name?
2: Yeah, Vishal.
0: Hi, Vishal.
2: And
0: how are you?
2: Name it. Good. What about you?
0: Mera achha hu, achha hu. Chalo, naam kya hai ji ladki ka?
2: वो कैटरीना कैफ है.
0: आपकी जो वाइफ है उनकी जो मामे की बेटी है उनका नाम पता है आपको?
2: मामे की बेटी?
0: मामी की बेटी का नाम पता? नहीं पता ना? देखो यही बातें आपको याद नहीं रहती, बाकी सारी बातें आपको याद रहती है. मैं सब समझ रहा हूँ विशाल भैया. गुड इवनिंग फन इज योर रेडियो. रेडियो वॉल्यूम लो. योर वॉल्यूम अप. हुज दिस?
1: या दिस इज स्नेहल.
0: हाँ स्नेहा.
1: स्नेहल.
0: हाय स्नेहल, कैसी है?
1: ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: ऊपर वाला मेहरबान है. फटाफट बताओ नाम याद है आपको, किसकी बात कर रहा हूँ?
1: हाँ,
0: कैटरीना कैफ कहती हैं जी. स्नेहल जी, स्नेहल जी एब्सोल्युटली राइट. यस इट इज कैटरीना कैफ सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे. बोर्न ऑन टुडेज डेट, दैट वाज द 16th ऑफ जुलाई. द ईयर वाज 1983. एंड बिकॉज ये इतना घूम ली ना, मतलब कहाँ कहाँ बेचारे चाइना और ये और वो. मैं इंडिया में ही था. हमारा देखो, आपने देखा पूरे राउट में कहीं इंडिया नहीं आया. हांगकांग, हांगकांग से चाइना, चाइना जापान, जापान से फ्रांस, फ्रांस से स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से यूरोप, यूरोप से पोलैंड, पोलैंड से बेल्जियम, बेल्जियम टू हवाई. इसमें कहीं इंडिया नहीं आया. और मैं बहुत, मतलब मेरा भी वीज़ा नहीं लगा हुआ था, दैट्स वाई वी कुडंट मीट. और फिर वो एक्टर वैक्टर बन गई, मैं इधर आ गया और विक्की भाई का फ़ोन आया कि मार्विन मैं कर लूँ. मैं कहा यार एब्सोल्युटली ब्रो, करो करो, यही टाइम है आपका. और अब हम बहुत दूर हो गए हैं, तो विक्की भाई यू गो अहेड. तो इस तरह से ये सेटलमेंट हुई एंड वी आर विशिंग दिस वंडरफुल एक्ट्रेस अ वेरी हैप्पी बर्थडे. बहुत सारी फिल्में इन्होंने करी हैं जी, एंड उसमें से स्टार्टिंग हुई थी विद द मूवी धूम, बूम रादर 2003, एंड उसी का गाना आपने अभी सुना. एंड देन मैंने प्यार क्यों किया, नमस्ते लंदन एंड मेनी मोर. राइट आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम द नेक्स्ट कमर्शियल ब्रेक, वी विल बी सेलिब्रेटिंग कैटरीना कैफ राइट हियर ऑन फन एशिया विद सम लवली ट्रैक्स. स्टे ट्यून्ड.
3: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
4: Official tax and finance partner, AG FinTax.
3: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
4: In association with Passion Health Primary Care.
5: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
6: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Ohar ab ye $1 million property bhi.
7: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
8: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
9: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masuri Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites, जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, here everything is better.
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं.
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं.
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं.
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
12: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. for your tax planning, bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
13: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
14: It's Lawson.
13: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
14: It's Lawson.
13: Daddy, what is the law?
15: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
16: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
17: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
12: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
18: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
19: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
18: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
12: Foodistan in Aubrey. Everything they see, one place, one vibe.
20: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
21: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
20: क्या मतलब?
21: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
20: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
21: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
20: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
22: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
23: Weekend का plan अभी तक नहीं बना. Bus 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम.
24: फोटो करा दूं बस. Oh, I'm gonna take my pass. Oh, I'm gonna take my pass.

Welcome back to the 6 o'clock hour right here on Fun Asia Radio. Fun Asia Radio करता क्या है जी, करता है आपको entertain और आपको बुलाता है जी together as a community. That's why we call it Fun Asia Radio, bringing the community together. It's 6:07 in the studio clock, 6:07. आज की शाम मैं रहूंगा जी आपके साथ all the way till 7 o'clock, and Thursday है तो इसका मतलब ये है कि मैं इस हफ्ते का last show Monday को फिर वापस आऊंगा, क्योंकि हमारा साथ आपके साथ होता है मंडे टू थर्सडे 5 to 7 PM. इट इज़ द 16th of July, एंड व्हाट अ वंडरफुल गेम. यस्टरडे का सॉकर गेम बढ़िया था, आज का इंडिया और इंग्लैंड का गेम इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि मुझे उम्मीद कुछ और थी. बट होता तो वही है ना भैया, जो हकीकत होती है लाइफ का यही दस्तूर है. अब देखना ये होगा कि ये जो सैटरडे का गेम है इंग्लैंड और फ्रांस का, इसमें क्या होगा, और उसके बाद स्पेन और अर्जेंटीना. व्हाट डू यू थिंक, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. टुडे ऑल्सो मार्क्स द बर्थडे ऑफ विल फेरल, द मूवी एक्टर. 16th of July 1967 ही वॉज बॉर्न इन अर्वाइन कैलिफोर्निया. Of course, came to fame with the Saturday Night Live. Then he went on to star in features like The Anchorman, Old School, Step Brother, and Elf. Today marks his birthday. A very happy birthday to Mr. Will Ferrell from the team here at Fun Asia and from Banda Bandas. Break pe jaane se pehle, humne puche the ji aapse ek sawal pucha tha. Puche nahi the Marvin, sawal ek hi hota to puche thodi jaate. Par wahi sawal agar biwi puch le to ek hi sawal kai bari puche ja sakte hain. Khair, Katrina Kaif was celebrating her birthday. Not was, is celebrating her birthday. Birth name hai Katrina Rosemary Turcotte, and Turcotte, a very different name. Or jaise ki maine kaha ki she was somebody who's traveled the world in a very short time in her youth and was mostly homeschooled, jaise going from the birthplace Hong Kong to China, then to Japan, Japan to France, France to Switzerland, and then Eastern European countries, Poland, Belgium, Hawaii, and then finally settled down in London. Break hua tha inka in the industry with the movie Boom 2003. Then came a Telugu film which was called Maliswari 2004, and then came the Bollywood romantic comedy Maine Pyar Kyun Kiya 2005, Namaste London of 2007, and then many other performances that got really praised for. New York 2009, Mere Brother Ki Dulhan, Ajay Prem Ki Gazab Kahani Rajneeti, and we are happy to celebrate her birthday right here on Fun Asia. This part of the show is brought to you by none other than Page 3 Eatery. If you haven't been there yet, मैं कहता हूँ वहाँ जाइए, वहाँ जाके मेरे कहने पे आपने खाना है जी एक तो वड़ा पाव उनका विद द बूंदी जो साइड पे देते हैं, बूंदी मीठी वाली नहीं है, होता है बस एक जुगाड़, जाके आप वड़ा पाव खाओ और मुझे बताओ कैसा लगा. ट्राई देयर गलौटी कबाब, एंड इफ यू लाइक मटन बिरयानी देन आए हाए यू हैव टू ट्राई देयर नवाब्स रैंसम. ओहो, मुंह में पानी आ रहा है भैया, घूंट भरना पड़ा. तो ये चीज़ें अगर आप मिस आउट कर रहे हैं, नहीं ट्राई की है, यू हैव टू गो. पेज 3 121 हब पे आ गया है जी, राइट हियर ऑन 121 इन आलमा. एंड इफ यू हैवंट बीन देयर यू आर मिसिंग आउट. बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड meets modern flair. If you're looking for brunch, lunch, dinner, date night, yeah, foodie meetup, get to Page 3 for vibrant vibes and mix of flavor, energy, and a good time. Page 3 Eatery, right here on 121 and Alma in McKinney. Let's take you to Katrina's some more tracks. One of them is a lovely one that I love, and I hope you enjoy this one as much as I do. वैसे पूरे भारत में ना एकमात्र इंसान है जिसने आरटीओ की सारी चीज़ों को पालन किया है, वो है आमिर खान. क्योंकि हर 15 साल बाद पुराना मॉडल देकर नया मॉडल ले आते हैं. आमिर खान की शादी पे मैं नहीं जा सका था, मैंने आपको बताया ना, आई मिस्ड इट, क्योंकि यहाँ बहुत काम था. मैंने वैशाली से छुट्टी मांगी, इन्होंने नहीं दी, अब मैं नहीं जा सका. फिर उनका फ़ोन आया था, फ़ोन मैं मिस कर गया. फिर उनका मैसेज आया कि मार्विन डोंट वरी ब्रो, वी रियली मिस्ड यू, बट अगले वाले पे अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आना है.

0: वंडरफुल ट्रैक टेकन फ्रॉम द मूवी जिसका नाम था फितूर एंड दिस वाज अ लवली लवली ट्रैक इंडीड. और अगर आपने ये फिल्म देखी है इट्स अ रीमेक ऑफ अनदर फिल्म जिसका नाम था ग्रेट एक्सपेक्टेशंस गविथ पॉल्ट्रो एंड वन मोर आर्टिस्ट आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम बट यू गॉट टू सी दैट मूवी एंड देन सी दिस यू विल सी द रिलेशन आई एम टॉकिंग अबाउट. गुड इवनिंग टू यू फनेजा, हू इज दिस?
1: गुड इवनिंग सर. मुझे आपका नाम जानना था इसलिए मुझे फोन करा है, क्योंकि आप बड़ी सुरीली आवाज में बोलते हैं.
0: सर जी मेरा नाम मार्विन दास है सर, बंदा मार्विन दास, मार्विन दास कहते हैं साहब. और बस ये
1: वो एक रिक्वेस्ट है आपसे, वो बिंदास वाला गाना यार पूरा सुना दो. गॉड ब्लेस यू ऑलवेज विद बॉटम ऑफ माय हार्ट आई लव यू.
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर. आपने नाम नहीं बताया अपना.
1: मेरा नाम प्रदीप धीर है सर.
0: प्रदीप साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, बस इसी तरह प्यार बरसाते रहे.
1: बुजुर्गों की सेवा करता हूँ.
0: बहुत बढ़िया सर, ये इससे अच्छा नेक काम क्या हो सकता है मालिक. बस ऊपर वाला आपको और बरकतें देता जाए, इसी तरह हमें सुनते रहे. एंड यही तो प्यार है यार जो हमें बार बार आपके पास लेके आता है. और वाकई में ही बात कर रहे थे हम कटरीना कैफ जी की, उनका एक गाना है जो मैं अगला लगाने लगा हूँ. पर उससे पहले आपको ये बता दूँ कि शी इज़ समबडी हुज वन 4 स्क्रीन अवार्ड्स एंड 4 जी सिने अवार्ड्स अलॉन्ग साइड मैनी अदर अवार्ड्स एज वेल. बॉर्न इन ऑफकोर्स ब्रिटिश हांगकॉन्ग, उसके बाद लंबा सफ़र एंड देन सम अदर अवार्ड्स जैसे कि जो जीरो फिल्म आई थी दैट अर्न हर द जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एंड अ परफॉर्मेंस इन द मिस्ट्री थ्रिलर मैरी क्रिसमस 2024 वॉज वेल रिसीव्ड एज वेल. कटरीना frequently appeared in listings of India's most popular and attractive celebrities. Kaif was featured consistently in Forbes India Celebrity 100 list consistently in the 2010s. A regular brand endorser, she launched her cosmetic line called K-Beauty in 2019. She participates in stage shows and is involved with her mother's charity Relief Projects India, which helps underprivileged children. Kaif is of course married to Chota Bhai Vicky Kausal. For now, one more track. Ye lijiye. और उस टाइम जब तक ये गाना आप सुन रहे हैं तब तक ये सोचिए कि मैथ्स बड़ा अजीब सब्जेक्ट नहीं था. वैसे मैं 10th में फेल हूँ मैथ में, 10 नंबर है मेरे, पर मैं ICIC बोर्ड में था, उसमें एक सब्जेक्ट में फेल होना अलाउड होता है इंग्लिश को छोड़ के. बट मैथ इज सच ए फनी सब्जेक्ट ब्रो. कार कोई और चलाए, उसकी स्पीड है हम बताएं, हद हो गई.

0: Wishing Katrina Kaif a very happy birthday once again from the team here at Fun Asia and from Banda Bandas Marvin Das. चलो भाई अभी मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि बीवी उसने बोला है कि थोड़े से बर्तन साफ करने हैं, वो मैं भूल गया था, और आके आपको वापस बताऊंगा कि बीवी को काबू में कैसे रखें।
1: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
2: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
3: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
4: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
3: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
5: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
6: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
7: Jeet unki hoti hai jinki nazar sirf target par hoti hai. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
8: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
9: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
10: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Miraj Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
11: Visit Miraj Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Miraj.
12: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
11: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
13: हेलो गाइस, दिस इज मी किंजल दवे एंड यू आर लिसनिंग एंड वाचिंग फन एशिया रेडियो.

बंदा ये बिंदास है जी, नाम मार बिंदास है, शो का नाम भी द बिंदास शो, ओनली ऑन फनेजर रेडियो 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। बारिश का माहौल कहीं कहीं जगह, क्या हाल चाल है डीएफडब्ल्यू? पकौड़े शकौड़े फोन कर दिए, ऑर्डर कर दिया, चाय की चुस्की लग रही है, कॉफी शॉफी चल रही है, कॉफी शॉफी अपनी जगह, जो फिल्टर कॉफी है भाई उसका अपना मजा। वैसे मैं दोनों नहीं पीता, चाय और कॉफी बट हाँ मैंने चाय और कॉफी पी जरूर है लाइफ में। डोंट थिंक दैट आई एम लाइक अ इडियट हु डजंट नो चाय का स्वाद या अदरक का स्वाद। आई एम नॉट अ बंदर, आई मीन बंदर डोंट नो अदरक स्वाद, बट लकीली आई नो अदरक लहसुन टमाटर एवरीथिंग आई टेस्ट मैन गुड टेस्ट। एंड मेरे मन को भाया तो आज मैं घर पे करेला पकवा के खाया, जिसको पाव पाव खाना है वो खाए। बजकर 25 मिनट हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। आज थर्सडे की शाम है जी, जुलाई की 16 तारीख है। 16 तारीख को मेरे भाई का बर्थडे होता है। मेरे बर्थडे भाई का बर्थडे है, भाई का बर्थडे है, मार्टिन भाई मेरा बड़ा भाई, 2 साल बड़े हैं हमारे से, उनका बर्थडे है जी। वेरी हैप्पी बर्थडे टू माय एल्डर ब्रदर मिस्टर मार्टिन दास। बहुत जगह बचाया उन्होंने, बहुत जगह फालतू में मरवाया भी है माँ बाप के आगे, बट बचाया भी काफ़ी जगह है। सो आई फॉरगिव हिम फॉर द क्लासेस माँ बाप के आगे जा जाके ना। ये पता है आपको, छोटा बेटा आपका क्या कर रहा है, हट चुगलखोर। खैर टुडे आज एआई डे भी है, क्योंकि मेरा भाई नकली है ना, मतलब नकली नहीं असली भाई यार, बट टुडे इज नेशनल एआई डे। 16th ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, द नेशनल डे वेयर वी एक्नॉलेज द रिमार्केबल प्रोग्रेस। लोग कहते हैं रिमार्केबल प्रोग्रेस पर सुव इन्फ्लुएंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन नेशनल एआई डे, बट आई थिंक यार एआई आए, ये वही है, ए आए तो हम गए, मतलब यही हो रहा है भाई। वो जहाँ जहाँ जा रही है नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं। कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस का जो जुगाड़ है जी, इसको बोलते हैं जी एआई, व्हिच इज़ थिंकिंग फॉर इटसेल्फ। इन 1951 मार्विन मिंस्की, लो यहाँ पे भी मार्विन ने काम किया, मार्विन मिंस्की एंड डीन एडमंड्स क्रिएटेड वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क व्हिच वाज कॉल्ड स्नार्क, SNARC। बाय 1952 आर्थर सैमुअल डेवलप्ड अ चेकर प्लेइंग प्रोग्राम दैट कुड लर्न फ्रॉम इट्स ओन एक्सपीरियंस, प्रूविंग दैट मशीन्स कुड learn from their mistakes. Today we celebrate this ever-changing, ever-evolving world of AI by celebrating the National AI Day. This is your evening drive time show. I have a giveaway which is coming up from India Bazaar. Ji haan, India Bazaar mein milega. India Bazaar Fort Worth khul chuka hai ji aapke liye, and they are giving you a delicious offer, lovely offer. And wo kya hai ji, pehle to ye bata dun, Fort Worth mein India Bazaar is now open, your one-stop destination for authentic Indian groceries, produce ho, sabziyan taazi aapko milengi, spices, snacks and all your daily desi essentials. India Bazaar is located in Fort Worth on 5152 Quadrant Way in Fort Worth. For people living in Fort Worth, Keller, Hurst, Haslett, this is a great news. Now, what are you going to get? One winner is going to get a gift hamper, which is a grocery hamper from India Bazaar Fort Worth. Ab agar aap is contest mein bhag lena chahte hain, bina bhage, without running, you can take bhag. And usko ke liye karna kya, aapko mere sawal ka jawab dena hai. And I am going to ask a question this time, aur isme na creativity wale answer chahiye. Jo dega sabse creative jawab, usko milega ye special grocery hamper from India Bazaar Fort Worth. Now make sure ki ye jo contest hai, please do not participate in it just for the contest, just jeetne ke liye. Please don't do that, because we want somebody from that area to win who can actually go to Fort Worth India Bazaar and enjoy this gift hamper. So, if you live in Keller, if you live in Fort Worth, if you live in Hurst, if you live in Haslett, and you can go to the India Bazaar in Fort Worth, I am going to ask a question. The most creative answer gets themselves this gift hamper from India Bazaar. Question kya hai? सुनने में आया है कि लड़कियां जैसे जैसे बड़ी होती है ना, धीरे धीरे धीरे धीरे बड़ी होती है, वो बड़ी होते होते जब तक बड़ी हो भी जाती हैं, तब तक रोते समय शीशे में देखती हैं। क्या ये बात सही है? आपको क्या लगता है, ऐसा होता है कि लड़कियां जो हैं रोते समय शीशे में देखती हैं अपने आप को, इसके लिए कि वो क्यूट लग रही हैं कि नहीं? अब अगर आप इस बात से सहमत हैं तो मुझे बताइए कि यस या नो, और अगर ऐसा नहीं तो लड़कियां क्या डिफरेंट करती हैं फ्रॉम मैन व्हेन इट कम्स टू क्राइंग, बताइएगा ज़रा। बट ये मेरे को सवाल लेडीज से एक्चुअली जेन्युइनली, कि डू यू लेडीज थिंक कि ऐसा होता है कि जब आप लोग रोती हैं छोटे से बड़े होते होते, आप अपने आप को शीशे में एक्चुअल देखती हैं कि क्यूट लग रही हैं कि नहीं? सोच के बताइएगा जवाब। पहले एक गाना। तो लड़कियों, आप रोते हुए शीशे में अपने आप को चेक करती हैं एक बारी क्यूट लग रही हूं कि नहीं? और अगर करती हैं तो क्यूटनेस के अलावा कोई और भी वजह है कि आप चेक करती हैं?

जो जो मुझे पुराने सुन रहे हैं थैंक यू वेरी मच, जो नए सुन रहे हैं वेलकम टू द क्लब। अब जब आप ऐसे ही मुझे सुनते रहते हो अब अगर मैं पसंद हूं

ऑल राइट, लेट्स सी हु डू वी हैव ऑन नंबर वन। के भैया, लड़कियां अगर अपने आप को रोते हुए शीशे में चेक करती हैं तो क्यों करती हैं? क्यूट लगने के लिए करती हैं कि कोई और वजह है चेक करने के लिए? गुड इवनिंग फनेजिया, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? कोई बात नहीं, आगे आएगी।

0: आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए और मुझे ये बात बताए कि क्या ये सच है। गुड इवनिंग फनीश, या कौन बोल रहा है? हेलो, बरसात में आपको मेरी ये मुझे म्यूट करके तुम कहाँ चले गए? कौन बोल रहा है
1: सर? ऑफ एयर राइट?
0: नो सर, ऑन एयर सर। आर यू वांटिंग टू पास रिपीट? इफ यू डोंट वांट टू आई विल टेक यू ऑफ एयर। होल्ड द लाइन फॉर मी प्लीज। गुड इवनिंग फनीश, हाउ इज दिस?
2: दिस इज रविंदर।
0: हाय रविंदर जी, की हाल है? अपने आप नूं जदों रोंदियां शीशे च वेख लैंदियां कि मैं क्यूट लग रही हां कि नहीं लग रही।
2: मैनूं नहीं लगदा, नकलां तो अपने आप तों वी लुको लैंदियां ने कि ओह रोंदियां ने।
0: अच्छा, ये गल भी ठीक है। तुहाडा नां की? क्या तुसीं रविंदर? हां जी। रविंदर जी, तुसीं कित्थे रहिंदे हो? वेयर डू यू लिव?
2: फोर्ट वर्थ
0: रहिंदे हो रविंदर जी? बट तुसीं मैनूं दसो कि कदे तुसीं कल्ले हो ते तुसीं कदे रोए हो? वो तुसीं देखिआ अपने आप नूं शीशे च? नुकसान हो गया, मस्कारा दुबारा लाना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी तुहाडी कॉल दा। यू लिसनिंग टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो। सवाल ये था कि क्या लड़कियां जैसे जैसे बड़ी होती है अपनी क्यूटनेस और अपनी ब्यूटी को बरकरार करने के लिए, एक्चुअली मैं पता क्या करता था जब मैं रोता था ना छोटा था, सो एवरी टाइम आई वुड क्राई जब मतलब मसला सॉल्व हो गया, मैंने कोई फिट पाया, जो भी स्यापा पाया, उसके बाद जब मसला ठंडा हो रहा है तो जब आंसू आते थे ना तो मैं उनको अपनी जीप से ना स्कूप करता था गालों से और फिर टेस्ट करके देता था नमकीन है, और नमकीन होने के बाद मुझे पता लगता था कि यार ये तो ठीक है, अच्छे हैं, गुड। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज उसको कहते हैं। सीखो मेरे से क्या क्या आइडिया है। बट खैर, आपसे अभी भी सवाल ऑन है कि क्या लड़कियां अपने आप को शीशे में रोते हुए देखती हैं, और अगर देखती हैं तो क्यों? जस्ट फॉर द क्यूटनेस, या फिर ये देखने के लिए कितना गुस्सा दिलाया उतना ही गुस्से से तोड़ूंगी उसको।

0: बारिश का माहौल हो रहा है इस टाइम पे, पता है पकौड़े खाने का इतना दिल कर रहा है ना, क्योंकि आज एक्चुअली कॉर्न फ्रिटर्स डे भी है। अमेरिका में मनाया जाता है जी पकौड़ों का दिन, पर ये कहते हैं जी कॉर्न लो थोड़ा सा, कॉर्न मतलब मक्की, और उसमें मिक्स कर दो थोड़ा सा हैलापिनो, थोड़ा सा कायन पेपर, पेपर जैक चीज, या फिर चॉप स्कैलियन, फ्रेश चाइव, सिलांट्रो, स्मोकी रोस्टेड रेड पेपर्स, या फिर थोड़ा सा आप क्रिएटिव हो सकते हो, सम क्रम्बल मीट्स लाइक चिकन और समथिंग एल्स विद कॉटेज चीज एंड अ डैश ऑफ स्मोक्ड पापरिका। बट कहते हैं जी कि आज के दिन पकौड़े जरूर बनाओ। और बताओ उधर से हो रही है बारिश, एक तो दुनिया हवाले नहीं जीने देते हमें, हमने सोचा है तेल वाली चीज़ नहीं खानी, ये कह रहे हैं कि आज नेशनल पकौड़ा डे है, तो भैया पकौड़े बनाओ, थोड़ा सा वो नैपकिन से टाप टाप करो और रगड़ दो, बाकी की बात बाद में। कौन है मेरे साथ जो बताना चाहते हैं कि लड़कियां क्या धोते हुए शीशा देखती हैं, और अगर देखती हैं तो क्या क्यूटनेस के लिए कि किसी और वजह से?
1: हेलो।
0: हेलो सर।
1: जी सर, मेरा आंसर है कि जब वो शीशे में देखती है ना, वो ये चेक करती है कि जो उनके टीयर ड्रॉप हो रहे हैं, आर दे सिमेट्रिक और नॉट।
0: अच्छा, इतना तक होता है मतलब कि ये, मतलब ये भी परफेक्टली गिरे जैसे मोती गिरते हैं, मोती वैसे।
1: सर अब आपसे क्रिएटिव पूछा है तो इसलिए थोड़ा।
0: क्या नाम है सर आपका?
1: दीपक।
0: दीपक, जलते रहो बड़े भाई और सुनते रहो फनेशिया रेडियो, देखते हैं कौन जीतता है ये वाला। फॉर नाउ इट इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक इन सेलिब्रेशन ऑफ कैटरीनाज बर्थडे। एक फैन मोमेंट हुआ, अभी भाई का कॉल आया, बोले यार ये वाला गाना मार्विन जी कटरीना का सुना दो। मैंने कहा भैया तेरे से बड़ा आशिक पहले लाइन में लगा हुआ है, ये लियो।

0: wonderful, wonderful, wonderful track. Once again, wishing Katrina a very happy birthday. And the winner of the contest for me is Deepak. Jalte raho, and you are going to win that gift hamper from India Bazaar. Please give me a call back and I'll take your information. And I'm going to be right back after this short break for the last segment of the Bindaas Show.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
5: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
7: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
8: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे.
9: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
8: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
10: बेटा, 95% आए?
11: हाँ मम्मी.
10: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
12: मेरा?
10: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
12: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
13: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इंप्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
14: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
13: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
14: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
5: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia, get $100 off your first month.
15: I've been researching retirement planning.
16: Oh really? Where?
15: Google, YouTube, a guy on TikTok.
16: Or you could just talk to Wealth Active.
15: What's the difference?
16: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
5: Wealth Tactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
11: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
12: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
11: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
12: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
17: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
11: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
17: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
17: सच में सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.